FM की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तिथि 4, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जुलाई महीने की 26 तारीख। प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का अंक, कलाकार थे ए हरिहरन और उत्तरा केलकर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। इसमें आज सुनिए फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। ये है फिल्म पुकार का भक्ति संगीत।

0: रुकी है जनाब, अंदर जाना अलाउड नहीं है।
1: अरे भाई मैं टाउन हॉल का केयरटेकर हूँ, अमनुल्ला खान नाम है मेरा, ये देखिए आई कार्ड।
0: जाइए।

आज के समर्पण कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्मों से ली गई भक्ति रचनाएं।

कार्यक्रम अभिवरण अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। 7 बजे जोहार चायवासा कार्यक्रम होगा। 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होता है। 8:15 मॉर्निंग न्यूज। 8:30 आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। उसके बाद लोक संगीत कार्यक्रम माटी की महक में। फिर होता है विविधा कार्यक्रम पूर्वान्न 9 बजे। 9:30 पर आज सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित है। 9:45 आज का रसरंजन कार्यक्रम होगा। 10 बजे फिल्म संगीत। 10:30 आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। सांध्यकालीन सभा में समाचार

सुगम संगीत। इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे एक ही कलाकार सुभाषीष मित्रा की आवाज़।

प्रातः के ठीक 8-7 बज रहे हैं और हम लेकर हाजिर हैं आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। इसका पहला नगमा आ गया आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जाग उठा इंसान।

सिंह, इश्क शायद वही कागज़ है जिस पर कोई अलविदा मुकम्मल नहीं। ये आ गया फिल्म जनता हवलदार का गाना अनवर की आवाज़ में।

ताज़ा अखबार और पत्र पत्रिकाओं के पन्नों की खुशबू जैसे वक्त ने अभी अभी ही अपनी मुहर खोली हो।

खिड़की पर धूप रोज़ दस्तक देती है, मगर कमरे में कोई आवाज़ नहीं उतरती। चाय का कप देर तक भाप छोड़ता रहता है, फिर अपने ही सन्नाटे में ठंडा हो जाता है। दीवार पर टंगी घड़ी वक्त नहीं इंतज़ार गिनती रहती है।

रात अपनी स्याही से मेरे तकिए पर चांद का धब्बा छोड़ जाती है। रास्ते मिलते तो हैं मगर किसी कदम की आहट नहीं मिलती।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

मिट्टी की खुशबू जब सांसों में उतरती है तो हर धड़कन तिरंगे की तरह लहराती है। नदियों का पानी भी रगों में दौड़ने लगता है जब वतन का नाम होठों पर मुस्कुराता है। सरहदें सिर्फ नक्शों पर खींची लकीरें नहीं, ये शहीदों की दुआओं से बनी इबारतें हैं। हर खेत में अन्न नहीं उम्मीद भी उगती है, हर गांव में भारत की धड़कन बसती है। हमने हवाओं से भी सीखा है सिर ऊंचा रखना, आंधियों से सीखा है झुकना नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो मुस्कुराकर चल पड़ेंगे, वतन की राह में हर इम्तिहान मंजूर होगा। यह देश हमारी पहचान ही नहीं, हमारी रूह का सबसे उजला आईना है। चलो ऐसा जीवन जिए कि आने वाली नस्लें हम पर नाज करें। सिंह, वतन से बढ़कर कोई इबादत नहीं होती, वतन से बढ़कर कोई इबादत नहीं होती, जो इसके लिए जी ले वही सचमुच अमर होता है। तो आइए सुने वतन परस्ती से लबरेज चंद नगमे। सलाम इस जज्बे को।

आप सुन रहे थे वतन परस्ती की भावना, इसके जज्बे से लबरेज चंद गीत आज के जोहार चाईबासा कार्यक्रम में।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। हम आपको याद दिलाते चलें कि आप सुन सकते हैं आज का विविधा कार्यक्रम पूर्वान्ह है 9 बजे से।
1: सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

ये आकाशवाणी चाईवासा है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, जियो के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
6: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। इसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
5: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
6: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
5: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
7: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
5: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
8: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
5: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bagged silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIR should be filed against them.
6: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है. कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम.
5: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
7: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines. So, we immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw karein peacefully apne ghar wapas jaye.
5: Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his best to meet the expectations from him.
8: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department with full strength. I will try to work with all humility and honesty.
5: President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effects. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the Prime Minister's Office, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Prime Minister Modi will interact with participants of the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 at 4:30 p.m. today via video conferencing. Our correspondent reports that over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister.
2: The Viksit Bharat Vibrant Village Programme 2026 was organized in two phases from 4th to 30th of the last month, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The participants were selected through a nationwide online quiz competition that witnessed participation from more than 3 lakh youth. As part of the program, participants live with local communities and undertook activities such as Swachhata drives, awareness campaigns on government schemes, Yuva Sammelans, cultural exchange programs, tree plantation drives, mini model panchayat simulations, interactions with local artisans and visits to institutions of strategic importance. With Nitika Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on IX handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu returned to New Delhi this morning after concluding a state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. During the visit, the President held high-level engagements aimed at strengthening India's strategic partnerships with the three European countries and expanding cooperation in areas of mutual interest. More from our correspondent.
9: The visit marked several historic milestones, including the first ever state visit by an Indian president to Moldova and North Macedonia and the first state visit by an Indian president to Romania in over three decades. Throughout the state visit, President Murmu held delegation-level talks with the heads of state, addressed business forums, and interacted with members of the Indian diaspora. The president also received honorary recognition from the Bucharest University of Economic Studies in Romania. During the visit, she highlighted India's rapid economic growth, technological advancement, commitment to global cooperation. Subhashri Mahapatra, Akashvani News, Delhi.
5: Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. The main function is being held at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. More from our correspondent.
3: The Kargil War Memorial at Dras is witnessing solemn and patriotic ceremonies as the nation marks the 27th Kargil Vijay Diwas. Union Defense Minister Rajnath Singh is leading the commemoration by paying floral tributes at the Kenopath in honor of the brave heart of Operation Vijay at Kargil War Memorial. The Raksha Mantri will also inaugurate the virtual walk-through portal of the Kargil War Memorial, visit the Hut of Remembrance and Veer Bhumi, interacts with Veer Naris and Veer Matas and flag of the Shaurya Vijay Yatra motorcycle rally. The observance of Kargil Vijay Diwas is a solemn reminder of the courage, sacrifice and unwavering commitment of Indian Armed Force in safeguarding the nation's sovereignty. From Dras, Zainat Ali for Akashwani News.
5: On the occasion of Kargil Vijay Diwas, Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah and External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar paid tribute to the brave soldiers who laid down their lives in defence of the nation. In a social media post, Mr. Singh said, "The nation will forever remain grateful to the valiant soldiers who displayed extraordinary courage on the inaccessible heights of Kargil in 1999. As part of our series, Person Behind the Story, in our upcoming episode, we speak to Major D.P. Singh, a Kargil War veteran and India's first Blade Runner. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 12:30 p.m. You can also listen to the program on the News on AIR app and the News on AIR official YouTube channel. In a major escalation of protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has announced a two-day agitation beginning today, which will culminate in a long march to Muzaffarabad. Rights leaders Umar Nazir Kashmiri and advocate Khwaja Mehran have called for a complete shutdown in Dadiyal and urged people across the Mirpur division to join the movement. In squash, seed Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to clinch the World Junior Championships. Anahat defeated Egypt's Ruqayya Salim 3-0 in the girls' singles final of the World Junior Championships at Niagara on the Lake, Canada. The 18-year-old Indian prodigy overcame second seed Salim 11-3, 11-7, 11-9 to win the gold medal. This is a significant achievement as a player from Egypt had won this title for 16 consecutive years and Anahat broke that monopoly without dropping a game. Union Minister Mansukh Mandaviya congratulated Anahat Singh after winning the title. In a social media post, Mr. Mandaviya said, "History has been made and it is a proud moment for every Indian." Indian sub-junior men's team thrashed arch rivals Pakistan 3-1 in the gold medal match of the FIH Youth Hockey F5S Asian Championship. Goals from Romit Pal, Captain Ketan Kushwaha and Shahrukh Ali crowned India as the Asian champions. With this victory, the Indian men's team also finished at the top of the elite pool table. By virtue of reaching the final, both India and Pakistan have qualified for the inaugural FIH Youth Hockey 5S World Cup. In the women's competition, the Indian sub-junior women's team bagged the silver medal after a hard-fought contest in their final against China, ensuring both Indian contingents return home with medals. The India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over Madhya Maharashtra and Odisha today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sara Mujtaba.
10: Thank you, Sunil. The resignation of Dharmendra Pradhan is the top news in most days. Pradhan steps down, Gen Z steps up, headlines Hindustan Times. With the withdrawal of the protest by CJP, all 18 Delhi metro stations in Delhi, which had remained shut due to security reasons, have reopened, reports the Asian Age. To curb unfair practices in examinations, the centre is tabling its amended bill in the Lok Sabha tomorrow, which proposes 2-month deadline for a probe, writes the Tribune. A day after the US announced permanent tariffs on imports from 60 trading partners, the center said that about 45% of India's exports to US remain outside the purview of the new 10% tariff, reports The Hindu. A US federal appeals court has rejected President Trump's bid to revive the H-1B visa fee of $100,000 for highly skilled foreign workers, reports Hindustan Times. Flood situation in Assam remained grim, even as water level has started receding, reports the Pioneer. India's ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List after a 28-year wait, reports the Statesman. The Times of India has quoted an international study that reveals that over half of world's migratory bird species are on a decline. And finally, in a significant technological step forward for the tea plantation sector and in a first, a tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centers and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
5: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team back silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
11: Akashwani se pesh hai khabarnama. Adab.
12: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। संदेश के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
13: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
14: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
15: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
14: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को करेंगे संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, 15 मिनट में जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुंचाने का है लक्ष्य, राज्य में 108 सेवा को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, दो और आरोपी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक के लिए जारी की भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और महिला एशियन हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, भारत ने कजाकिस्तान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
16: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
12: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा को पूरी तरह आधुनिक और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। पुरानी एम्बुलेंस को हटाकर अत्याधुनिक एम्बुलेंस लाई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर एम्बुलेंस मरीज तक पहुंच जाए। व्यापारियों का प्रतिनिधि संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। संस्था के महासचिव रोहित अग्रवाल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में मीडिया से बातचीत की।
17: पूर्व सपोर्ट मिला हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, हमारे सब कमेटी चेयरमैन का, पूर्व अध्यक्ष गंजो है, सबका भरपूर सपोर्ट मिला और ये साल वाकई में मील का पत्थर साबित होगा। हमने जो भी ये साल में किया वी वर जस्ट द फेस, इसका परिणाम विगत सालों से जो भी प्रयास होते आ रहे हैं हर कमेटी उससे ही हुआ है। दावोस का एक यात्रा हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि थी झारखंड सरकार के लिए भी और चेंबर के लिए।
12: झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से लाकर सीआईडी की टीम ने मुख्यालय में पूछताछ की। सभी से अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इधर सीआईडी ने आयोग के पूर्व परीक्षा उप नियंत्रक सरोजनी एनी तिर्की के आप्त सचिव सोनू कुमार और अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें एयर सुविधा के नाम पर यात्रियों को गुमराह कर रही हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा की सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं और स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लद्दाख में 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन कल शाम द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 99.95% मतदाताओं के बीच एनुमरेशन फॉर्म का वितरण पूरा हो गया। अब तक 86.69% फॉर्म का डिजिटाइजेशन और 80.21% फॉर्म का सत्यापन किया जा चुका है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शेष मतदाताओं से जल्द फॉर्म जमा करने और अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त आलोक कुमार ने नाला प्रखंड में करीब 95 एकड़ रकवा में फैले काजू बागान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि काजू की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
18: एक एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तभी हम लोग वो अवेयरनेस किसानों तक पहुंचा पाएंगे और उनको मोटिवेट कर पाएंगे कि अगर वो काजू का प्लांटेशन करते हैं, क्लाइमेट है सुटेबल है, तो हम लोग और किसानों को इंकरेज कर सकते हैं। साथ साथ की काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए प्रपोजल है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है, यहाँ के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा।
12: हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने केरेडारी प्रखंड स्थित एनटीपीसी की कोल परियोजना चट्टी परियातू का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विस्थापित परिवारों की समस्याओं को जाना। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जल्द इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेगा।
19: विस्थापित परिवारों को देखने ही नहीं आए बल्कि समग्रता में उनका विस्थापितों को व्यवस्थित तरीके से पुनर्वासित किया जा सके, उनकी जीवन की गुणवत्ता को कैसे बेटर किया जा सके और कैसे सारे रिसोर्सेज उन तक पहुंचाया जा सके, इसी कंटेक्ट जिला प्रशासन जिले भर की पूरी टीम आज ये देखने के लिए आई सभी पहलुओं पर विस्थापित परिवारों के लिए एक समेकित तरीके से एक कार्य योजना बनाई जाए।
12: मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा समेत आसपास के जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने के कारण राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश होगी। मस्कट में चल रही महिला एशियन हॉकी 5S चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को 8-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड की खिलाड़ियों संदीपा कुमारी और श्रुति कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1-1 गोल जबकि पुष्पा मांझी ने हैट्रिक लगाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन खत्म होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की हेडलाइन है, धर्मेंद्र अब शिक्षा के प्रधान नहीं, सीजेपी का आंदोलन खत्म। हिंदुस्तान ने लिखा है, केंद्र सरकार ने सीजेपी की सभी 3 मांगे मानी, जंतर मंतर पर देर रात तक जश्न मनाते रहे प्रदर्शनकारी। दैनिक जागरण की लीड है, जेपीएससी के गिरफ्तार आरोपियों से सीआईडी ने पूछे सवाल, काली सूची में डाली गई कंपनियों को परीक्षा लेने का जिम्मा कैसे मिला। दैनिक भास्कर लिखता है, चक्रधरपुर रेल मंडल में भ्रष्टाचार पर सीबीआई की कार्रवाई, रेलवे के इंजीनियर 4 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को करेंगे संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, 15 मिनट में जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुंचाने का है लक्ष्य, राज्य में 108 सेवा को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, 2 और आरोपी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक के लिए जारी की भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और महिला एशियन हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड की खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, भारत ने कजाकिस्तान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

FM की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी चाईबासा है। प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी की महक। इसमें आज सुनिए हो लोकगीत, कलाकार हैं बाबूराम सोए और साथी।

माटी की महत्व लोक संगीत के इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे हो लोकगीत। कलाकार थे बाबूराम सोए और साथी।

अभिविधा प्रस्तुत है आज का हमारा ये कार्यक्रम। इसमें कीजिए स्वीकार SB सिंह का प्यार भरा नमस्कार।

उद्योगी को कहाँ नहीं सो समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने।

0: جو گرا تو زمین نے اسے تھام لیا، جو اٹھا تو آسمان تھوڑا اور اونچا ہو گیا، وہ اپنے زخموں کو آئینہ نہیں بناتا، بس ان سے روشنی چھننے لگ دیتا ہے، اس کی جیب میں امید کا ایک مرا سا کاغذ ہے جس پر کل اب بھی صاف صاف لکھا ہے، وہ آندھیوں سے بحث نہیں کرتا، وہ اپنے چراغ کی لو سیدھی کر دیتا ہے، اس کے حصے کا سناٹا بھی کسی پرارتھنا کی طرح سنائی دیتا ہے، سلام اس جذبے کو جو انسان کو وقت سے بڑا بنا دیتا ہے۔ سنہ اتنا ہی کہتا ہے، جس دل میں حوصلہ سانس لیتا رہے وہاں ہار کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرتی۔ تو یہ تھی میری کویتا سلام اس جذبے کو۔ شامعین، اب آئیے آپ کو ملواتے ہیں شری گوتم رستوگی سے، جو کہ جواہر نگر ودیالیہ بشتم پور کے ورشٹھ ہندی شکشک ہیں، آپ کو جانکاری دے رہے ہیں ایک مردھنیہ ہندی ساہتیہکار سیارام شرن گپت پر۔
1: उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख कोई भी पाता, आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खो के, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है, तुक्ष कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वदा पछताओगे। उपरोक्त पंक्तियां हिंदी के मूर्धन्य विद्वान सियाराम शरण गुप्त की हैं। उनका जन्म 4 सितंबर 1895 को उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण और माता का नाम काशीबाई था। राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त इनके अग्रज हैं। छोटी उम्र में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनके बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त ने ही इन्हें सब प्रकार से संभाला। इनका जीवन बुंदेलखंड की प्राकृतिक सूक्ष्मा में बीता और बड़े भाई के सानिध्य में रहा, जिनकी काव्य कला का प्रभाव इन पर अवश्य ही पड़ा है। साथ ही साथ सन 1929 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कुछ समय इन्होंने महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में भी बिताया, जहां इन्हें माँ कस्तूरबा गांधी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। आज़ादी के बड़े संघर्ष में, बड़े संग्राम में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिरगांव गए, ये बात सन 1940 की है, तो उनका स्वागत सिया राम शरण गुप्त ने किया। इसके बाद वे विनोबा भावे के संपर्क में आए और इन पर गांधीवाद का प्रभाव जीवन भर रहा। सियाराम शरण की जो भावुक रचनाएं हैं उनमें उनकी कहानी काकी में इंसानी इच्छा को बहुत ही कातर भाव से संजोया गया है। गुप्त ने मैं तो वही खिलौना लूंगा कविता में एक गरीब बच्चे और उसकी माँ के मनोभावों को बहुत ही भावुक अंदाज में पेश किया है। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी वह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। मिट्टी या सोना, मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। राज हठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूंगा वही वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। अपनी रचनाओं में मानवीय भाव प्रदर्शित करने वाले सियाराम शरण गुप्त, जिनकी मृत्यु 29 मार्च को हुई, आज उनकी पुण्यतिथि है और हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने साहित्य की एक लंबी सेवा की है। उनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले खंड काव्य हैं जिन्हें अधिक संख्या में लिखा गया है। उनके नाम हैं मौर्य विजय, अनाथ, आद्रा, विषाद, दूर्वादल, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, सुनंदा और गोपिका। मानुषी उनका कहानी संग्रह है और पुण्य पर्व उनका नाटक है। उन्होंने गीता संवाद नाम से अनुवाद भी किया। उनका एक नाट्य गीत भी है उन्मुक्त गीत। कविता संग्रह है अनुरूपा और अमृत पूर्व। काव्य ग्रंथ है दैनिकी, नकुल, नोआखाली में, जय हिंद, पाथे। उपन्यास लिखा अंतिम आकांक्षा और नारी और गोद। एक निबंध लिखा झूठ सच और ईशावासोपनिषद, धम्मम पद और भगवद गीता का पद्यानुवाद किया। उन्हें दीर्घकालीन हिंदी साहित्य सेवाओं के लिए 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया और 1941 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। उनकी समस्त रचनाएं 5 खंडों में प्रकाशित हुईं और 29 मार्च 1963 को उनका निधन हो गया।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार आपको भी मैडम, सबको जो है।
0: तो मैं चाहूँगी आप अपना परिचय खुद दें।
1: जी मेरा नाम है संतोष मुंडा और मैं आबू जैसी रे रानू केंद्र चलाते हैं और रोगियों का उपचार का काम करता हूँ।
0: तो यानी आप ये आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: ये आपने कहाँ से सीखा?
1: जी मैंने ये सीखा तो हमारा दादू ही है, लेकिन इसका कोर्स मैंने बिहार राज्य के आयुर्वेदिक केंद्र से मैंने ट्रेनिंग लिया इनका।
0: अच्छा, तो ये पूर्ण रूप से आप चिकित्सा में कब से जुड़े हैं?
1: मैं पूर्ण रूप से हो गया, मैं कम से कम 5 साल हो जाएगा मैम।
0: तो ये मैं जानना चाहूँ कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है ये क्या है, आप इसके बारे में बतला दें हमारे श्रोताओं को।
1: जी मैं सबको ये बताना चाहूँगा, आयुर्वेद एक आयु सीमा को बढ़ाने वाला, जो कि प्रॉपरली इसमें ना केमिकल ना कुछ, पेड़ पौधा जिसने भगवान का सृष्टि है, समयों से जो है ना ये आयुर्वेद चीज जो है ना चलते हुए आ रहा है, ये जड़ी बूटी जो हमारा गांव देहात के लोग इसे उपचार होते हैं। जी
0: तो इस उपचार के अंतर्गत आप के पास जो मरीज आते हैं हमारे क्षेत्र में
1: जी हमारा पास उपचार ये होता है मैम, जैसे कि उसको हम लोग दवा के रूप में कूटते हैं और बनाते हैं। काफी नासेस का प्रॉब्लम हो गया तो जैसे पूर्वजों ने जो है पत्ता को लेके थोड़ा सा तेल में बना लेते, उससे मालिश कर ले तो हमारा नस जो बंद हुआ वो जल जाता है। हमारा हड्डियां जोड़ों में जो दर्द होता है उनको मालिश से एक बहुत बड़ा सेवा है, दवा से भी बढ़कर है, तुरंत काम करता है। और काफी मरीजों को हम लोग मालिश करके भी ठीक करते, जोड़ों को बैठाते भी हूँ और हड्डी के लिए उनको भी जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये हमारा प्राकृतिक चीज में बहुत सारा पेड़ पौधा में ताकत है, उसी से किया जाता है।
0: तो ये जो तेल आप लोग बनाते हैं मालिश के लिए वो कहाँ से लाते हैं?
1: जी ये जंगलों में जाते हैं, हमारा यहाँ जंगल आसपास के हैं, काफी जंगल में ही सब मिलता है, क्योंकि आसपास में तो आजकल काफी खदाने हो गए हैं, सब कोड़ काड़ के फेंक देते हैं, जानकारी नहीं है, तो काफी जंगल में जा करके इसको खोजना पड़ता है।
0: तो आप लोग कहाँ से खोजते हैं, कैसे खरीदते हैं?
1: जी कुछ बाहर से आता है मैम, जैसे कुछ हिमालय में होता है, कुछ चीज जैसे एक ऐसे साधारण सी नमक बोले तो सेंधा नमक हमारा आयुर्वेद में बहुत उपयोग होता है, जैसे कुछ चीज पाकिस्तान से आता है तो कुछ बाहर से आते हैं, हिमालय से आते हैं, ऋषिकेश जंगल से आता है, कुछ तो सरना से हम लोग तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जड़ी बूटी मिलती है।
0: तो आप कहाँ से व्यवस्था करते हैं ये जड़ी बूटियाँ?
1: मैं अधिकतम सिमरीपाट से हमारा आता है, बंदगांव के जंगल से आता है, इधर हमारा सरंडा साली, तो सरंडा में काफी खदान हो गया तो मिट्टी के कारण पत्ता में उतना जो भी उनमें ताकत होना चाहिए वो सब नहीं है, तो कभी हम लोग जिधर खदान नहीं हुआ है वो जंगलों में घना जंगलों से लाते हैं। जी
0: तो आपके पास अभी जो है और भी कर्मचारी होंगे जो आपको इस काम में मदद करते हैं?
1: जी काफी कर्मचारी लोग हैं, क्योंकि अकेले से नहीं होगा, कूदना पड़ता है, हाथों से पीसना पड़ता है, तभी सब तैयार होते हैं। जी
0: तो ये जो चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं आप लगभग 5 साल से कर रहे हैं ना?
1: जी जी।
0: तो यहाँ पर जो आपके यहाँ आते हैं हमारे क्षेत्र में मरीज प्राय किस तरह के आते हैं? मालिश के लिए तो आते हैं ये हाथ पैर जोड़ दर्द वाले, और इसके अलावा और किस तरह से मरीज आते हैं?
1: अभी के समय में मैडम हम लोग देखेंगे समाज में और या कम उम्र में शादी, अब जब कोरोना के बाद काल से निसंतान दंपति बहुत आते हैं, इनका संतान ही नहीं होता है। अगर संतान नहीं है तो ये हमारा समाज में बहुत दुख की भी एक बात है। तो काफी लोगों ने काफी बार कहीं पर चिकित्सा होने के बाद भी एलोपैथिक में भी लोग निराशा हो जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद से आज के समय में निसंतान और कमर दर्द जोड़ दर्द तो आम चीज हो गया, जैसे नासिक संबंधित अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कम उम्र में भी जैसे लोग 15 साल 18 साल हो रहा है उनका नस काम नहीं कर रहा, हड्डी में दर्द कर रहा है, ये अभी का जनरेशन जैसे हम लोग कोई भी चीज रासायनिक ज्यादा सेवन करने से, और भी बहुत सारा चीज है आमतौर पर सभी लोग हम लोग जानते हैं।
0: तो ये जो निसंतान आते हैं आप तो उनका भी इलाज करते हैं?
1: जी ये हमारा प्राकृतिक इलाज भी होता है, इनका भी अच्छा उपचार है। हमारा वहाँ से करीब करीब 150 लोग, ये आम चीज है कि मेरा जो काम कर्मचारी लोग है उन्हीं का ही काफी लोग है, 4 जन करीब है, यहीं से हम लोग का दावा से हुआ है लोकली। किनका 12 साल, किनका 15 साल, किनका 25 साल, जिनका कोई कभी हो गई नहीं बोल के, ये सब बात भगवान का भी आशीर्वाद है और जितना हमारा जड़ी बूटी में सब पावर है। जी
0: आपने इस तरह का ये इलाज किया?
1: जी जी, हमारा चाईबासा में मैम काफी जगह टुंगरी एरिया में भी देखे, जहाँ पर की बड़े बड़े चिकित्सक लोग बोलते हैं कि आप तो आपका कभी संतान नहीं होगा, लोग निराश, ऐसे अनेक लोग मॉल से आसपास में अनेक लोगों का हुआ। ये हमारा चाईबासा खास करके जिकपानी प्रखंड में बोला जाए हमारा चाईबासा एरिया में सबसे ज्यादा है। जी
0: आप किस तरह से मतलब जांच करते हैं इनका?
1: जी हमारा पास पेशाब पानी जो यूरिन का माध्यम से हम लोग देखते हैं, अगर कहीं डॉक्टर रिपोर्ट है, कहीं डॉक्टर के घर वालों गए हैं तो उनका रिपोर्ट के अनुसार कहीं पर अल्ट्रा सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड जो भी हमारा हॉस्पिटल में होता है उनके ये सभी सारा चीज देखते हैं, जिनका महिला में प्रॉब्लम है या पुरुष में प्रॉब्लम है उनका कमियाँ को।

शामिल, ये था आज का विविध कार्यक्रम। आकाशवाणी चायवासा से अब सुनिए अगला कार्यक्रम।

0: ये है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी न्याय और मंत्रालय का जो प्रायोजित कार्यक्रम है, आइए सुनते हैं।
1: Environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Community, ek community jab koi problem se joojhte hain, ye ho sake ki ek kharab air quality ho, ya to unka pani ka samasya ho, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब एनवायरनमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पर एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज़ को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज़ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूँगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसा बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज widely discussed in our court, जो हमारा court पर भी discuss किया गया है, that is a precautionary principle. So there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment? That need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: Loke app, website www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that give the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी, जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीक़े से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया. उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज़ है उन पर बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है. एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमिडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है. तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 acres ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है. तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था. उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा

0: कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है, एंड सीआरजे नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए, उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये सीआरजे का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दिस आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट, जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज we read in class 8 book that environmental is everything around us, it impacts most the public, everyone, and what is needed is that when we talk about environmental justice we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में, कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविज़न बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दी, उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रिस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो वो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: इस प्रायोजित कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुरों के रंग। इसमें सबसे पहले यह है फिल्म कर्मा का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, दिलीप कुमार और मोहम्मद अजीज की आवाजों में।
3: मेरी बीवी, do you love me? Do you love me?
4: तो क्या कहा आपने?
3: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू।

0: ने कभी किसी से प्यार किया?
1: किया।
0: कभी किसी को दिल दिया?
1: किया।
0: मैंने भी दिया।
2: दिल दिया ये मेरे प्यार की हद थी, दिल दिया ये मेरे प्यार की हद थी, चांद दी ये एतबार की हद थी, मर गया मैं खुली रही आँखें, ये तेरे इंतज़ार की हद थी।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का कार्यक्रम सुरों के रंग। फिल्म संगीत पेश खिदमत है ये कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले ये नगमा है कसम पैदा करने वाले की फिल्म से शीर्षक गीत। फनकार हैं विजय बेनेडिक्ट।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ मिश्रित गीत। यह आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची में। और आज आपके साथ है रेडियो सखी अर्चना
1: और मैं उषा।
0: नमस्कार जोहार।
1: आज की सुहानी सुबह में जब ठंडी हवाएं दिल को छू रही हैं, बादलों की नरम छाव हर एहसास को और भी खूबसूरत बना रही हैं, ऐसे ही हसीन लम्हों में मोहब्बत भी चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है।
0: मुझे भी एक खूबसूरत सी बात याद आ रही है उषा जी। मोहब्बत वो एहसास है जो लफ्जों से कम और धड़कनों से ज्यादा समझ में आती है।
1: वाह क्या बात है। और इसी बात पर एक छोटा सा शेर अर्ज है। मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, जब किसी अपने की याद दिल में उतरती है जिंदगी और भी हसीन हो जाती है और ज्यादा बयां होती है। और जब कोई प्यारा सा गीत कानों में बिखरता है ना, तो फिर उसके शब्द
0: अपने आप
1: कानों में गूंजने
0: लगते हैं। बिल्कुल। तो कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की याद, तो कभी कोई प्यारा सा गीत दिल के बहुत करीब आ जाता है। आज की यह सुबह भी ऐसे ही अनगिनत खूबसूरत एहसासों को समर्पित है।
1: तो चाय की प्याली हाथ में थामिए आप सभी और दिल को सुकून दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब अगले ही कुछ पल में होंगी प्यार भरी बातें, ढेर सारी जानकारियां और एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत।
0: तो आइए इस खूबसूरत सुबह को प्यार, मुस्कुराहट और दिल को छू लेने वाले मधुर गीतों के नाम करते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
4: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
4: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
4: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: सुबह की इस प्यारी शुरुआत में मौसम भी जैसे दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा है। उषा जी, आज रांची का आसमान बादलों की हल्की हल्की चादर ओढ़े हुए है और मौसम पूरी तरह सुहाना बना हुआ है। मतलब कि आज हम लोग अब मौसम की बातें करते हैं
6: बिल्कुल। और जानती हो, ऐसा लग रहा है ना जैसे बादल शहर के ऊपर ठहर कर धीरे धीरे कोई खूबसूरत धुन गुनगुना रहे हों। ठंडी हवाएं चेहरों को छूकर ऐसी ताजगी दे रही है कि हर पल किसी याद सफर जैसा महसूस हो रहा है।
5: और आपको बता दें आज कि रांची का जो तापमान है कैसा रहने वाला है। तो आज का रांची का अधिकतम तापमान जो है ना लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और बीच बीच में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो मौसम विभाग ने कहीं कहीं बारिश, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है।
6: वाह, यानी आज छाता साथ रखना भी एकदम समझदारी वाली बात होगी ना। और अगर बारिश की फुहार मिल जाए तो उसका आनंद लेना भी बनता है। भीगी सड़कों पर पेड़ों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, बस दिल यही कह उठता है कि मौसम थोड़ा और ठहर जाए।
5: बिल्कुल सच कहा आपने, आज का मौसम उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो चाय की प्याली के साथ खिड़की से बारिश देखना पसंद करते हैं या फिर अपने किसी खास के साथ लंबी ड्राइव का सपना संजोए बैठे हैं।
6: और अगर आपके पास कोई खास नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, एक कप गर्म चाय, पसंदीदा गीत और रांची का यह दिलकश मौसम, ये काफी है मुस्कुराने के लिए।
5: बिल्कुल सही कह रही है। तो आज मौसम के हर रंग का आनंद लेते हैं हम लोग और बारिश और बिजली की संभावना को देखते हुए जरूरी सावधानी भी जरूर रखिए। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस खूबसूरत मौसम को अपने दिल में बसाइए इस गीत के साथ।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उषा जी, चलिए अब आज के इतिहास की बात करते हैं। आज के दिन के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज का दिन बहुत ही खास है। जैसे आज के दिन सन 1874 ईस्वी में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज जी का जन्म हुआ था।
3: और आज 1914 में भारत की प्रसिद्ध कवियत्रियों में से एक विद्यावती कोकिल का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और सन 1915 में प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य कृष्ण

0: पट्टा भी, जोइस का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
1: और सन 2005 ईस्वी में नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ था, और सन 2008 ईस्वी में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की थी।
0: और पता है अर्पणा कि आज और भी खास दिन है, पता है इसके बारे में? हमारे देश में इसके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है, सम्मान और कृतज्ञता का दिन भी आज है। यानी कि आज 26 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह वह दिन है जब वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए कारगिल की दुर्गम चोटियों से दुश्मनों को खदेड़कर तिरंगे की शान को और ऊंचा किया था।
1: बिल्कुल, और कारगिल विजय दिवस केवल एक ऐतिहासिक दिन नहीं बल्कि उन वीर जवानों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की। उनके अद्वितीय साहस, त्याग और देशभक्ति को पूरा राष्ट्र सदैव याद रखेगा।
0: कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ जब घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया। ये चोटियां इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां पहुंचना भी बेहद कठिन था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने कठिन मौसम, बर्फीली हवाओं और दुर्गम पहाड़ों की परवाह किए बिना अपने अदम्य साहस से हर चुनौती का सामना किया।
1: बिल्कुल, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। लगभग 2 महीने तक चले इस कठिन युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय प्राप्त की और अपने सभी चौकियों पर फिर से तिरंगा लहराया। तभी से हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करते बल्कि देश के सम्मान के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने से भी कभी पीछे नहीं हटते।
0: और आज हम उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने अपने परिवारों से बढ़कर मातृभूमि को चुना। उनके माता पिता, जीवन साथी और परिवारों का त्याग भी उतना ही प्रेरणादायक है। उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी पा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कारगिल विजय दिवस हमें यह भी सिखाता है कि देश की सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें अपने देश के प्रति ईमानदार, जिम्मेदार और समर्पित रहना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: और एक बार फिर हम अपने सभी अमर वीरों को, कारगिल के अमर वीरों को सलाम करते हैं और कारगिल विजय दिवस की अनंत शुभकामनाएं देते हैं। कारगिल विजय दिवस हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है
3: जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
2: और लगता है अब बातें करते करते हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं क्योंकि ये समय आ चुका है
3: उनसे श्रोताओं से विदा लेने का। तो तब तक श्रोताओं, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
2: तो चलो कहते हैं नमस्कार जोहार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के साथ संवाद मन की बात में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव वीडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
0: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था

कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं।

महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली

के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं,

विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है, उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में
खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे मन की बात। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: बहनों नमस्कार। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। हम दो सखियां, मैं महजबीन और आज हमारे साथ एक और सखी
1: वंदना। नमस्कार बहनों, कैसी हैं? पता है कि आपको हमारा इंतजार रहता है और बहनों हमें भी आपका वैसे ही इंतजार रहता है। और आज हम इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं जानकारी के साथ मनोरंजन भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम।
0: बहनों, हम हमारे सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी, सभी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हानिकारक कार्बन और डाइऑक्साइड सोखते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं। ये वर्षा का मुख्य कारण भी होते हैं, यानी कि देखा जाए तो बहुत जरूरी हमारा ये पर्यावरण। इसके अलावा ये हमें फल, लकड़ी, औषधियाँ प्रदान करते हैं। और हाँ, मिट्टी का जो कटाव होता है ना बहनों, रोक कर पर्यावरण को संतुलित रखते हैं।
1: एकदम सही कहा महाजवी। और पेड़ पौधों की बात जब हम कर ही रहे हैं तो याद आया कि पूरे विश्व में एक ऐसा वन भी है जिनकी जड़ें पानी के भीतर होती हैं, लेकिन ये हमें चक्रवातों और तूफानों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। और उस वन का नाम है मैंग्रोव वन।
0: यह वन मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान अधिक होता है। हमारे देश भारत में बहुत सारी ऐसे भी यहाँ वन पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
1: एकदम सही कहा। और भारत और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो है सुंदर वन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं।
0: हाँ, और ये वंदना, ये वन वास्तव में हमारे तटीय क्षेत्रों के प्राकृतिक रक्षक भी हैं। ये खारे पानी को उगने वाले विशेष पेड़ पौधे होते हैं जो कि उसे सोखते हैं, जिनकी सघन जड़े सुनामी, चक्रवात और तूफानी लहरों को रोककर तटों का कटाव भी बचाती हैं। साथ ही साथ ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी वरदान है। यानी कि हम कहें ना तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, सभी जीव जंतु के लिए।
1: हाँ, सही कहा महजबी। और चलिए जानते हैं कि इन वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और सबसे पहले तो इन मैंग्रोव वन की जो मजबूत जड़ें हैं वह समुद्र की तेज लहरों और हवाओं की ऊर्जा को शोषित करके उस जिससे कि तटीय इलाकों में जो जान माल का नुकसान होता है वो कम हो जाता है।
0: और साथ ही साथ बहनों, ये अन्य उष्ण कटिबंधीय जंगलों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलती है।
1: और साथ ही मछलियों, केकड़ों और अन्य जलीय जीवों की कई प्रजातियों के लिए ये प्रजनन और सुरक्षित आश्रय स्थल होते हैं। इनकी जड़ें तलछट को फंसा लेती हैं, जिससे कि पानी एकदम साफ रहता है और जो प्रदूषण होता है वो समुद्र में नहीं जा पाता है।
0: मैंग्रोव की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती है, जिससे कि समुद्र की लहरों के कारण होने वाली कटाव रुकती है। तंत्र प्रदूषकों, भारी धातुओं और तलछट को छानकर पानी को साफ और सुरक्षित करती है।
1: हाँ हाँ, और समुद्र के जो असली रक्षक है मैंग्रोव, वे तूफानों से हमारी रक्षा भी करते हैं।
0: तो बहनों, ये थी बहुत ही खास जानकारी और इस जानकारी को आप जरूर देखेंगे कि और इस पर आप जरूर पढ़िए आगे कि ये आखिर इतना फायदेमंद क्यों है। तो बहनों, चलिए हम आपको कार्यक्रम में आगे लिए चलते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
4: ओ,
3: जैसे UPI से।
4: अच्छा।
3: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: हम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: तो बनो, आपका हमारे इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम जानकारी करेंगे हमारे बुजुर्ग हमारे घर की नींव, और इसके बारे में हमें बताएंगे बिंदु प्रसाद, जो कि एक कवित्री हैं और समाज सेविका भी हैं, और इनसे बातचीत की है हमारी सखी मजवी ने।
5: आज हम आपको जानकारी देंगे कि हमारे बुजुर्ग जो हमारी नींव है, उन्हें हम किस तरह से देखते हैं। हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पूर्वज नहीं। हम उन्हें छोड़कर इतिहास ऐसे कट जाते हैं अगर उन्हें हम छोड़ते हैं तो। और सबसे बड़ी बात ये कि हम समाज के से जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे एक जड़ की तरह है, और इस तरह से हम अपने बुजुर्ग को देखते हैं सम्मान के रूप में, और हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग को ऐसे ही सम्मान मिलते रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान भी है, यानी कि हम कहें तो हम बुजुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आज करेंगे कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें देखते हैं। तो आज की हमारी मेहमान है, मिली आज के मेहमान से बिंदु प्रसाद दीदीमा, जो कवित्री भी है और समाज सेविका भी है। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार करती हूँ आपको भी और सखियों को भी। बहुत सुंदर विषय पर आपने मुझे आमंत्रित किया है। सभी को नमस्कार।
5: जी, हमारे बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, आप किस तरह से देखती हैं?
6: मैं दो पंक्तियां दोहे से सुनाती हूँ, अपने भाव लिखती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। शीतल छाया में पले

0: सही बात है, अगर नींव बुजुर्गों की है तो वहां अनुभव की भंडार है, और ये हमारा रिश्तों का संसार भी यही। किसी भी परिवार समाज की आधारभूत संरचना में बुजुर्गों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हम लोग सब जानते हैं। जिस प्रकार किसी भवन की मजबूती के लिए उसका उसके नींव पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार परिवार की स्थिरता, संस्कार, एकता बुजुर्गों पर आधारित होती है। तो यह कहना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सार्थक है, और इसी को आधार मानते हैं हम लोग कि बुजुर्ग घर की नींव होते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमारे बुजुर्ग के जो रौनक है उनके बारे में बयां किया है, और आप हमारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग एक सीख देते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है और किस तरह से व्यवहार करना। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी?
0: जी, बहुत सुंदर ही प्रश्न आपने आजकल समसामयिक इसमें रखा है, बिल्कुल सही। इस बारे में जिस घर में बुजुर्गों का सानिध्य होता है वहाँ एक अलग आत्मीयता, गर्माहट और आनंद का वातावरण होता है, ये महसूस करने वाली बात है। और जहाँ बुजुर्ग रहते हैं, हम लोग इसको इसको लोकल भाषा में कहते हैं बहुत घर भारी होता, मतलब बहुत गर्माहट होती है। परिवार केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना होता है, स्नेह, प्रेम, संस्कार और भावनाओं की यह संगम स्थली है। इस संगम स्थली को सुंदर और जीवंत बनाने में घर की बुजुर्गों की अहम भूमिका है, और वो बच्चों के साथ किस तरह से घुल मिल करके इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, ये रीति रिवाजों और परंपरा संस्कृतियों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, यह बुजुर्गों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। परिवार की पहचान उनकी परिवार की पहचान और उनकी विरासत से ही आगे बढ़ता है। उनकी झुरियां में इतिहास बसा है, ये हम सब जानते हैं। तो बच्चों के साथ उनका साथ रहना, एक दूसरे के मूल्यों की शिक्षा देना, उसमें आदर, सहानुभूति, जिम्मेवारी सिखाते हैं। बुजुर्ग जब अपनी जीवन की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, उससे जुड़ाव बढ़ता है। बच्चों को बुजुर्ग जीवन काल का ज्ञान देते हैं, जबकि बच्चे नई तकनीक सिखाकर संबंधों और रिश्तों को मजबूत करते हैं। इसे इंग्लिश में सिम्बायोसिस करते हैं। आप भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि बुजुर्ग हमारे लिए जरूरी हैं। बच्चों और बुजुर्ग का सामंजस्य ही परिवार को समृद्ध करता है।
1: आपने क्या खूब कहा है कि बुजुर्गों की जो झुरियां हैं, उनके जो कांपते हुए हाथ है, उनका कमजोर शरीर है, फिर भी वो हमें सीख देते हैं जिंदगी की, वो हमें सीख देते हैं कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, वे हमें सीख देते हैं कि परेशानी में, खुशी में, गम में किस तरह से
0: डट बिल्कुल रहना। बिल्कुल सही फरमाया आपने।
1: तो अब हमारे बुजुर्ग हमारे जो परिवार की जो मजबूती है उसे मजबूत खूब अच्छे से थामे रहते हैं, और उनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है नई पीढ़ी के लिए। तो हम अगर देखें तो यही कहेंगे कि आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है उनका रहना। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
0: जी, ये तो शाश्वत सच है कि जहाँ बुजुर्ग और बच्चे इकट्ठे होते हैं, मैंने पहले भी कहा, वो समृद्ध परिवार से ही समृद्ध समाज, और समृद्ध समाज से ही समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है। परिवार में बड़े बुजुर्ग बच्चे जब इकट्ठे साथ रहते हैं तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। हमारे बुजुर्ग अपने अनुभवों से बच्चों के साथ छोटी छोटी गतिविधियां, जैसे उनको पूजा सिखाते हैं, खेल करना सिखाते हैं, खेलते हैं उनके साथ, बागवानी सिखाते हैं, छोटी छोटी रोजमर्रा की खरीदारियां भी सिखाते हैं, जो कि दैनिक कार्य में बहुत आगे जाकर के हेल्प करता है। बच्चों को साथ ले जाते हैं, ठीक है, बच्चों के प्यार से एक टॉफी भी मिलता है, पर बाजार के मूल्यों का उनको अवगत कराते हैं, जिससे अपनापन और प्रगाढ़ होता है। बुजुर्गों का धैर्य और बच्चों की मासूमियत रिश्तों में मिठास घोलती है। कहते हैं ना, बच्चे बूढ़े संग जब, बढ़े प्रेम की रीत, घर आंगन है स्वर्ग तब जीवन सुंदर गीत। तो एक दूसरे का साथ से ही बहुत गहरा रिश्ता पनपता है। जीवन सुचारू चलने के लिए दोनों को एक दूसरे की हर प्रकार से आवश्यकता होती है। त्योहार की परंपरा साथ मनाने, संबंधों से मजबूती आती है। संयुक्त परिवार के विघटन से थोड़ा सा न्यूक्लियस फैमिली अब हम लोग हो गए हैं, एकल परिवार हो गए हैं। संयुक्त परिवार के विघटन से थोड़ी मिठास में कमी आई है, पर आधुनिक सोशल मीडिया फिर से इसे मजबूती प्रदान कर रहा है और नई तकनीक में खुलकर संवाद संभव है। गलतफहमियां दूर होती हैं, रिश्ता मजबूत होता है, रिश्ता बच्चों और इसमें मजबूत होता है
1: जी। और अब चलते चलते हमारी बहनों के लिए, खासकर उन बहनों के लिए क्या संदेश होगा जो एकल परिवार के बीच में रह रही हैं या ऐसी जिंदगी गुजार रही हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो कहा जाए तो मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं और किसी वजह से शहर में रह रहे हैं और अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगी जो परिवार के बीच में रह रहे हैं और अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, तो क्या संदेश होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में कुछ दो चार शब्द बोलूंगी, उसके बाद मैं संदेश भी प्रेषित करूंगी। बुजुर्ग अपने आप में धैर्य, संयम, समझदारी और अनुभवों का खजाना है। किसी भी विषम परिस्थिति में, जैसे आपने कहा आजकल के महिला पुरुष दोनों नौकरी पेशा है, इस परिस्थिति में बुजुर्ग अपनी क्षमता अनुरूप बच्चों की देखभाल करते हैं, मजबूती से हाथ बढ़ाते हैं, नाना नानी दादा दादी से ज्यादा सुरक्षा, स्नेह, प्यार, शुरुआती शिक्षा बच्चों को और कहीं नहीं मिल सकता है। हम इतना कह सकते हैं कि हमें आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक सभी तरह के आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक सभी तरह से बुजुर्ग हमें सहयोग देते हैं, परिवार को समृद्ध करने में सहयोग देते हैं। बुजुर्गों का मान सम्मान, आपने ये भी पूछा, बुजुर्गों का मान सम्मान, शारीरिक कमजोरी में उन्हें संबल देते देखकर बच्चों की परंपरा निभाने की जाने अनजाने में सीख ले लेते हैं। जैसे अगर हमारा बेटा देखता है कि मैं अपने सास ससुर का सम्मान कर रही हूँ, दादी दादा का सम्मान हो रहा है, तो वो खुद ब खुद सीख रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूती प्रदान करता है। मैं दो पंक्तियों से, संदेश से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ।

0: जहां रहो सदा सब संग, उनके बिन सुना जहां रहो सदा सब संग। जी
1: मैम, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमारी उन नई पीढ़ी के भी, अच्छा संदेश दिया कि वो अपने बुजुर्गों की इज्जत करे, और उनको भी एक संदेश दिया जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो इस संदेश के साथ हम भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इतना बेशकीमती समय निकाला, हमारी सभी बहनों को बहुत ही अच्छी बातें बताई। हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत ही खास बातें थी जो कि सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे बुजुर्ग को इज्जत मिले, हमारे बीच रहें और उनका सम्मान हो। बहुत बहुत
0: धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद, गृह शोभा की टीम को, उन्होंने बहुत सुंदर विषय पर।
2: हाँ तो बहनों, अभी हम सुन रहे थे हमारे बुजुर्ग हमारे धरोहर और वे हमारे घर की नींव है, उनके बारे में जानकारी दे रही थी हमें बिंदु प्रसाद, जो कि एक कवित्री और समाज सेविका रह चुकी हैं, और उनसे बातचीत कर रही थी हमारी सखी महजबी।
1: आइए बहनों, थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं कारगिल दिवस के बारे में। 26 जुलाई को हर एक साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस दिन देश उन वीर सैनिकों को आदमी साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। तो बहनों, इस जानकारी के साथ ही अब दें हमें इजाजत। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की।
2: तो हम अगले कार्यक्रम फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
1: हाँ, मैं महजबीन
2: और मैं वंदना।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे पॉडकास्ट हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर, तो

0: ऑफिसर बनने की आठवीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस जाके छोड़ दिया गया था, तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बनकर जीना है।
1: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
0: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। पहले एनडीए में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, एनडीए में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी शारीरिक रूप से और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहाँ पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
0: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को सिर्फ कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या TV भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहाँ पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, उन दिनों 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सब के सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था, थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे?
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको, उस क्षेत्र में आगे उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं अखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आज आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबाइलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो। लेकिन हम डटे हुए थे, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज में दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, उसकी सुबह कैसी हुई थी? हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी। लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर, 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहू लुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रस्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई, तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूँ, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रक्चर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया। रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल रजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था। वो कर्नल रजिंदर सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं। परेशान करते होंगे आज भी?
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंग करना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन, वो तो तंग करने से नहीं हटे लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूँ?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पहला जो विचार था उसकी मैं उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉइस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है। शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के

0: नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था। हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी की आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम हैं। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं या फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद 21 किलोमीटर भाग किया है। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
1: जी
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, एनजीओ है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
1: जी
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
1: जी
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज़्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे को काफी

0: शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया और वहां से मेरे को ब्लेड ओनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड ओनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे तो 2018 को सेना ने ईयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था। और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ द सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं? उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप में ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान

0: के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वीरों को किया याद, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, कैच द रेन अभियान और हथकरघा दिवस में जन भागीदारी का आह्वान। आज देशभर में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को किया नमन। राज्य भर में 28

0: जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा हेल्दी लीवर कैंपेन। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच तथा समय पर उपचार पर रहेगा विशेष फोकस। झारखंड पुलिस ने अभियान चलाते हुए 890 चोरी हुए मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिकों को लौटाए। लोगों से अपील, ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का करेंगे उद्घाटन। टिकट या पास से ही मिलेगा प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है।
1: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। करगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि करगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस से 12 अगस्त तक हेल्दी लीवर कैंपेन चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान के तहत साहिबगंज जिले में मतदाता सत्यापन और डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से जारी है। जिले के सभी 8,72,148 मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म का 100% वितरण पूरा हो चुका है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए कई नई पहल शुरू की है। इसके तहत झारखंड सहित 5 राज्यों में वरिष्ठ नागरिक गृहों का उद्घाटन किया गया तथा बुजुर्गों के कल्याण के लिए बिरला ओपन माइंड्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड पुलिस ने विशेष अभियान और CIR पोर्टल की सहायता से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 890 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर CIR पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित NTPC की पकरी बरवाड़ी कोयला परियोजना में अपराधियों ने 2 हाईवा वाहनों पर फायरिंग कर शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। घटनास्थल से एक आपराधिक गिरोह के नाम का पर्चा बरामद हुआ है, जबकि सोशल मीडिया पर जारी एक ऑडियो में हमले को लेकर अलग दावा किया गया है। कोडरमा जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात हाथियों के झुंड ने नवलशाही थाना परिसर में घुसने की कोशिश की और आसपास के गांवों में भी नुकसान पहुंचाया। कोडरमा के जिला वन पदाधिकारी सौमित्र शुक्ल ने बताया कि फसलों या घरों को हुए नुकसान का नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
3: 25 से 30 हाथियों का झुंड पिछले 20 दिनों से लगातार कोडरमा में भ्रमणरत है, मरकच्चो एरिया में, जयनगर एरिया में। हमारी टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही है और गांव से दूर रखने की कोशिश कर रही है। सभी से यही अपील है, वन विभाग के नंबर प्रसारित हैं, उन पर सूचित करें। टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है कि फसल का भी नुकसान होता है या कि कोई दीवार वगैरह भी टूटती है तो निर्धारित मुआवजा ससमय आपको दिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड के खेल इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें ड्यूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। सुरक्षा के मोर्चे पर रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और मोराबादी क्षेत्र में ड्रोन तथा CCTV कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: इधर भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वीरों को किया याद, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, कैच द रेन अभियान और हथकरघा दिवस में जन भागीदारी का आह्वान। आज देशभर में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को किया नमन। राज्यभर में 28 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा हेल्दी लीवर कैंपेन। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच तथा समय पर उपचार पर रहेगा विशेष फोकस। झारखंड पुलिस ने अभियान चलाते हुए 890 चोरी हुए मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिकों को लौटाए। लोगों से अपील, ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप का करेंगे उद्घाटन। टिकट या पास से ही मिलेगा प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है कार्यक्रम अभिरंजनी के अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे मित्र पीलू में ठुमरी शिप्रा बोस की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत में मिस्र पीलू में ठुमरी शिप्रा बोस की आवाज में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए

0: 34555 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जाने की जिद।
5: आप सुन रहे हैं गजल आशा भोसले की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में गजल आशा भोसले की आवाज में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Good afternoon. This is Akashvani, and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पल में हम सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती।

कार्यक्रम जय भारती सुनने वाले सभी फौजी भाइयों एवं श्रोताओं को रेडियो सखी अर्चना का बहुत बहुत प्यार नमस्कार। वो जिंदगी क्या जिसमें मोहब्बत वतन की सिमटी ना हो, वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

आज कारगिल विजय दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर देश के सभी वीर फौजी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन अमर वीरों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन करने का दिन है जिन्होंने कारगिल की ऊंची चोटियों पर तिरंगे की शान को कायम रखा। आपके साहस, समर्पण और देशभक्ति की बदौलत हम सब सुरक्षित हैं और गर्व के साथ अपना जीवन जी पाते हैं।

सीमाओं पर खड़े सैनिक केवल देश की रक्षा नहीं करते बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और मुस्कानों की हिफाजत करते हैं। करगिल विजय दिवस पर हर वीर शहीद को विनम्र श्रद्धांजलि और हर सैनिक को हमारा सलाम। आइए अब सुनते हैं एक और दिल छू लेने वाला गीत,

वर्दी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से किया जाता है। कारगिल के रणबांकुरों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। आइए वीर जवानों के प्रति अपनी भावनाओं को इस खूबसूरत गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं।

कारगिल विजय दिवस पर हम अपने सभी अमर शहीदों को एक बार फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश की सीमाओं पर डटे हर वीर सैनिक को दिल से सलाम करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे जवान सदैव सुरक्षित रहें और हमारा तिरंगा यूं ही शान से लहराता रहे।

जय भारती कार्यक्रम में आज की ये अंतिम प्रस्तुति थी। अब अपनी रेडियो सखी अर्चना को दे विदा।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। वर्तमान में देश में रक्षा क्षमताओं के विस्तार की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की।
1: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे।
0: मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड समेत देश भर में लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्थित 4 अड़ी आवास पर सामूहिक रूप से इसका श्रवण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से सीधा संवाद उनके जन जन के प्रति समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रमों को सुना और देखा। उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया और लोगों से उन्हें आत्मसात करने का आग्रह किया। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के तेज गति से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा इस सप्ताह की। इस दिशा में सरकार ने पहल की है। लोकसभा में कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

0: उक्त परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक की पेश करेंगे। यह विधेयक लोक परीक्षाएं अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जाएगा। इधर राज्य में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर राजनीतिक मंच पर बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले पर फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें चेताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद इसके औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। 7 अगस्त को विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस बार मॉनसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान अनुपूरक बजट के अलावा सरकार कुछ अन्य विधायी कार्यों को निपटाना चाहेगी। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ बड़का गांव स्थित पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गोलीबारी की घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
1: छोटे हथियार का इस्तेमाल इसमें किया गया है, इसमें प्रिंस खान का पर्चा छोड़ा गया और उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी अपराधी इसमें शामिल है उसकी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो प्रिंस खान एक ऑडियो की जगह पे भेजा है कि 40 गोली फायरिंग की गई है, उस तरह की बात यहाँ पे स्पॉट पर नहीं दिख रही है। 5 खोखा हम लोग को मिला है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में डूरंड कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंसर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। इससे पहले रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज टूर्नामेंट के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आपटे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आपटे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवे दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवें दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने 1 साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके है, वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, की माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनिता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में। पहले ऐसे घर बीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी यत्ता हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना? आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे, वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का। तो मैंने बड़ा होके, मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा, मगर बाप के तरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आईच काली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
2: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा, वो कैसा है?
3: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दुसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्यपीठ झाला, तिसरा तमाशा रजवाडी वगनाट्यपीठ झाला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्यपीठ झाला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
2: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए, वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
3: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
2: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
3: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही

0: तमाचा था। तो लोग जिस दिन तमाचा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाचा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाचा कब आएगा, तमाचा कब आएगा। और उनकी कर्मणुक वही थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाचा है।
1: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे। आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है। और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाचे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाचा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाचा देखते हैं।
1: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
0: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाचा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है जब तक तमाचा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
1: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
0: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र ना तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा। ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से बजाए जाते हैं। ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
1: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
0: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाचे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाचा सुन रहे हैं। मेरा तमाचा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियोज निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
1: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
0: बहुत बेहतरीन रही है।
1: रघुवीर जी, तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
0: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के अंग पे पूरा बदन झका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
1: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
0: नहीं नहीं, बदला है, 1 महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले उनको भी पूछा, ये अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
1: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है, या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
0: होता है।
1: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है। अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है। तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी हो।

0: कर सकते हैं और अपना नाम भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगा है।
1: रघुवीर जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम रांची मेलोडीज आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Medicina!
1: कार्यक्रम रांची मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके साथ है कार्यक्रम की हम सफर अर्चना। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आइए सुनते हैं यशोदास की आवाज में फिल्म सावन को आने दो का ये गीत, जिसे संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

आज ये भवरा भी कितने बावरे हो गए हैं डाल पे खिली उन फूलों के प्रेम में। कल मिले थे हम ख्वाब में तितलियों से, इसी बात पे भवरे आज रूठे रहे। साहब बीवी और गुलाम का ये गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने और इसके बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने।

किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। आइए फिल्म अर्पण का ये गीत आपको सुनवाते हैं अनवर की आवाज में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मुझे कुछ कहना था तुमसे, लेकिन मेरे अल्फाज आज कुछ कम पड़ गए। फिल्म बॉबी का ये गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

समय के साथ चलना था हमें जिंदगी की राहों में, मिले तुम और समय ठहर गया बस तेरी ही बाहों में। फिल्म वंश का यह गाना आप सुनेंगे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

जन्म जन्म जो साथ निभाए तुम ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। आप सुनेंगे फिल्म भीगी पलके से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गाना, जिसे संगीतबद्ध किया है जुगल किशोर और तिलक राज ने, गीत के बोल लिखे हैं एम जी हसमत ने।

सच पूछिए तो हमें खुद खबर नहीं, मौसम बदल गया है कि बदलने लगे हैं हम। जानवर फिल्म का यह गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों में। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और गीतकार हैं समीर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रांची मेलोडी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड में भी लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के और मांझे स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के गोंदा में मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीदों, जवानों और को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर सैनिकों और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने आज खरसावां थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना की कार्यप्रणाली, विधि व्यवस्था एवं पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में डुरंड कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच शाम 5 बजे से जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। इसे लेकर स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें चर्चा होगी अच्छी आदत सफलता की कुंजी। प्रेरक व्यक्तित्व में आज सुनिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। साथ ही जानकारी दी जाएगी दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।

0: कैसे हैं बच्चों? आपके ऊर्जावान चेहरे बता रहे हैं कि आप एकदम ठीक हैं और कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्सुक भी हैं, है ना? तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए।
1: बच्चों, सबसे पहले एक पहेली आप सबसे कि वो कौन सा अनमोल खजाना है हम इंसानों के पास होता है जिसे ना तो तौला जा सकता है और न ही दिखाई पड़ता है और न ही चुराया जा सकता है, परंतु जिसके पास होता है उसके जीवन को समृद्ध बना देता है।
0: मैं समझ गई भैया, और मुझे लगता है कि हमारे नन्हे मित्र भी समझ गए हैं कि आप अच्छी आदतों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी आदतें ही तो वो अनमोल निधि है जिसे ना तो नापा तौला जा सकता है, ना ही वह दिखाई देता है, पर जिसके पास अच्छी आदतें होती हैं वो एक खुशहाल व्यक्तित्व जरूर बन जाता है।
1: जानते हैं बच्चों, हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हों, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हों या स्वामी विवेकानंद, सभी महान लोगों में एक कॉमन चीज थी, उन्होंने अच्छी आदतों को अपनाया।
0: हाँ बच्चों, हर महान व्यक्ति के सफलता के पीछे जो राज छिपा होता है वो होता है उनके द्वारा अच्छी आदतों का अपनाना।
1: अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छी आदतें होती क्या हैं? तो दीदी, अच्छी आदतें क्या होती है ये अपने नन्हे मुन्ने मित्रों को बता दिया जाए।
0: बच्चों, सुबह सुबह जल्दी उठना, समय पर शौच क्रिया तथा दांत मुंह की सफाई करना, समय पर पढ़ाई तथा अपना हर काम करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, बड़ों का आदर करना, भाई बहन या अन्य लोगों दोस्तों के संग प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, अच्छे स्वभाव वाले दोस्तों संग खेलना, गुरुजनों का आदर करना, ईमानदारी से हर कार्य पूर्ण करना, मम्मी के संग छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाना, ये सब ऐसी आदतें हैं जो यदि आप अपनाते हैं तो वो आगे चलकर आपको सफलता की सीढ़ी पर लेकर जाती है।
1: इसलिए कहा गया है बच्चों कि अच्छी आदतें सफलता की कुंजी होती हैं। आपको बता दें बच्चों कि हर नया सवेरा एक नया सीख लेकर आता है, सभी के लिए अवसर लेकर आता है नई उम्मीदों के संग, ताकि हर एक इंसान अच्छी बातों और अच्छी आदतों को अपनाकर जीवन खुशहाल बना सके।
0: अच्छी आदतें जादू की तरह होती हैं जो जीवन को समृद्ध करती हैं। इसीलिए दादाजी, नाना जी और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, सोच बदलो तो विचार बदलेगा, विचार बदल लो तो कर्म बदलेगा, कर्म बदल लो तो आदतें बदलेंगी, और आदतें बदल लो तो पूरी जिंदगी बदल कर सुंदर बन जाएगी।
1: इसीलिए बच्चों, आज से ही स्वयं से करो वादा कि रोज एक नई और अच्छी आदत अपनाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है।
0: इसके लिए आप जैसे कि अपना हर काम समय पर पूरा कर सकते हैं, जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं, मम्मी पापा तथा गुरुजनों की बताई हुई बातों को मानकर उसे अपना सकते हैं।
1: कहने का मतलब ये है बच्चों कि रोज एक अच्छी आदत अपनाएं, तब देखिएगा आपके अपनाए उन तमाम अच्छी आदतों से आपका व्यक्तित्व कैसे अपने दोस्तों के बीच, स्कूल में, हर जगह प्रभावशाली बनता है और आप जीनियस बनकर सफलता पाएंगे।
0: हमने ये तो जान लिया भैया कि अच्छी आदतें हमारे जीवन को कैसे सुंदर और सफल बनाती है। हम अपने जीवन में अनुशासन, स्वच्छता, प्रेम, प्रकृति के प्रति सम्मान जैसी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन और व्यक्तित्व निखर कर उठता है, सामने आता है लोगों के।
1: प्रकृति की बात चली दीदी, तो अब हम अपने बच्चों को लेकर चलते हैं उस रंग बिरंगी दुनिया में जहाँ पेड़ पौधों के संग संग सुंदर पक्षी भी हम सबके जीवन को रंगीन बनाते हैं।
0: हाँ भैया, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि सुंदर सुंदर पंख फैलाकर नाचता मैं जंगल जंगल, सिर पर कलगी मेरे आंखें है पर छोटी, थिरकता मैं वर्षा जब आ जाता, मनमोहक नाच दिखाता, रंग बिरंगे पंखों को फैलाता, सबको खुश कर जाता, बोलो बोलो मैं क्या कहलाता।
1: वाह दीदी वाह, कविता तो आपने बहुत अच्छी सुनाई, और कविता में आपने रंग बिरंगे पंखों वाले जिस पक्षी के बारे में जिक्र किया है वो पक्षी है हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर।
0: हाँ भैया, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है जो देखने में अत्यंत सुंदर होता है ना बच्चों।
1: बच्चों, काले मेघ आसमान पर जब छा जाते हैं, ठंडी हवाएं वातावरण को गर्मी से राहत देने लगती है, और वर्षा रानी जब धरती पर आकर गिरने लगती है, तब मोर को प्रकृति का दृश्य बहुत ही लुभाने लगता है। और फिर ऐसे मौसम में वो खुले स्थानों में अपना रंग बिरंगा सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगता है।
0: यानी कि वर्षा रानी का प्रिय साथी होता है ये मोर। बच्चों, बादलों की गड़गड़ाहट जो ही मोर के कानों में सुनाई पड़ती है वो आनंद से भर उठता है और झूमने लगता है खुशी से।
1: हाँ बच्चों, इस पक्षी की एक अलग और विशिष्ट पहचान भी है। नर मोर की गर्दन और छाती गहरे और चमकीले नीले रंग की होती है। इसके सिर पर कलगी, पीठ पर लगभग 4-5 फीट लंबे आकर्षक पंखों के गुच्छे होते हैं, जिस पर इंद्रधनुषी और आंख जैसे गोल चांदनुमा नेत्र बिंदु बने होते हैं।
0: बात करें भैया मादा मोरनी की, तो ये हल्के भूरे रंग की मोर की अपेक्षा थोड़ी छोटी आकार की होती है। इन लोगों का खान पान मुख्य रूप से अनाज, बीज, फल, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव होते हैं।
1: बच्चों, मोर सुंदर पक्षी होने के साथ साथ हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर, संस्कृति और गौरव का प्रतीक भी है। भारतीय संस्कृति और लोक जीवन से जुड़े होने के कारण यहाँ के लोकगीतों और चित्रकलाओं में मोर को विशेष स्थान दिया गया है और यही कारण है कि इसे वर्ष 1963 में हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया।
0: प्रकृति को देखकर थिरकने पर खुश होने वाला यह सुंदर पक्षी सिर्फ वर्षा ऋतु के आ जाने पर नाचता ही नहीं बल्कि एक सुंदर संदेश भी देता है कि हम सबको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, उसे सहेजना चाहिए।
1: बच्चों, मोर हमें सिखाता है कि प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। जंगल, पेड़ पौधे, पक्षी सभी से मिलकर ये धरती सुंदर बनती है और संतुलित रहती है।
0: भैया, चर्चा तो हमने कर ली, अब बच्चों को आगे क्या सुनवाया जाए?
1: दीदी, बच्चों का कुछ मनोरंजन भी करवाना चाहिए, तो चलिए हम बच्चों को सुनाते हैं एक बाल गीत।
2: सुन मेरे नन्नी, सुन मेरे मुन्नी, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ?

0: गर्मी में जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ,

0: राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।
1: बाल गीत तो आपने भैया बहुत अच्छा सुनवाया।
2: और दीदी अब बच्चों की बारी है।
1: आज हमारे साथ है बच्चों आपकी दोस्त जया मिश्रा, जो कि संगीत की छात्रा हैं। आज अपने कार्यक्रम में इनसे बातचीत करेंगे और इनसे सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं जया?
3: मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ।
1: आप चूंकि शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, उसका अभ्यास करती हैं, तो आपके गुरु कौन हैं?
3: जी, मेरे गुरु का नाम श्रीमती रीना बनर्जी हैं।
1: अच्छा, ये बताइए कि आपकी रुचि संगीत की तरफ कैसे हुई?
3: मेरी रुचि बचपन से ही संगीत की तरफ थी, वही एक कला थी जो मुझे हमेशा प्रभावित करती थी। इसमें मेरे माता पिता ने भी मेरा सहयोग किया।
1: आप संगीत का अभ्यास कब करती हैं?
3: मैं संगीत का अभ्यास शाम कुल एक घंटा और दोपहर कुल एक घंटा करती हूँ।
1: और कब से संगीत की शिक्षा ले रही हैं?
3: जब मैं वर्ष 8 साल की थी तब से मैंने संगीत शुरू किया था।
1: अच्छा, पढ़ाई के साथ संगीत का अभ्यास कैसे मैनेज करती हैं आप?
3: पढ़ाई के साथ संगीत का मतलब समय मैं इस प्रकार मैनेज करती हूँ कि जैसे कुछ समय मैं संगीत करती हूँ और कुछ समय मैं पढ़ाई करती हूँ। दोनों का एक बैलेंस बनाने के लिए मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है, जिसके हिसाब से ही मैं अपना कार्य करती हूँ।
1: तो आज अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाली हैं अजय आप?
3: आज मैं अपने दोस्तों को राग बिहाग सुनाने वाली हूँ, जो ठाट बिलावल पर उपलब्ध है। ये इसका वादी गंधार ग है और संवादी निषाद नी है। इसे गाने का समय रात का प्रथम प्रहर है।
1: तो बच्चों आइए सुना जाए जया मिश्रा से राग बिहाग।

0: धन्यवाद।
1: वाह, आपने तो अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छा शास्त्रीय संगीत सुनाया जो कि राग विहाग पर आधारित था।
2: और जया की ये प्रस्तुति भी बच्चों को खूब पसंद आई होगी। और दीदी, अब हम बच्चों को क्या जानकारी देने वाले हैं?
1: भैया, जानकारी में अब हम बच्चों को बताएंगे कि दांतों की देखभाल क्यों होती है जरूरी। दरअसल बच्चों, हमारे चेहरे की मुस्कान जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व को और अच्छा बनाती है। आपने भी देखा होगा ना कि यदि कोई आपसे मुस्कुराकर या हंसकर बात करता है तो वो ज्यादा प्रभावशाली लगता है। वही जिसके चेहरे पर मुस्कान नाम की चीज नहीं होती है तो वो कड़क प्रतीत होता है।
2: तो बच्चों, मुस्कान के अंदर तो दांत ही दिखता है ना, साथ ही एक और भी कारण है दांतों को साफ सुथरा रखने का, और वो है कि आपका दांत हमेशा आपका साथ निभाए। यदि दांतों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो दांतों में कैविटी होने लगता है जिससे उसमें छेद या गड्ढा और सड़न पैदा हो जाता है।
1: बच्चों, कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे दांत कितने मेहनती होते हैं? सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक वे मेहनत करते हैं ताकि हमारा भोजन पेट में जाकर अच्छे से पच सके। दांतों की सफाई के लिए यदि हम बहुत जल्दी जल्दी या ठीक से या फिर नियमित ब्रश नहीं करते हैं तो न सिर्फ दांतों में सड़न पैदा होता है बल्कि दर्द भी होने लगता है।
2: इसलिए बच्चों, दांतों की सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके लिए रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अच्छी तरह से जरूर ब्रश कीजिए।
1: मीठी चीजों को जब खाएं या भोजन करें तब भी अच्छे से कुल्ला कर लिया कीजिए और मम्मी पापा से कहकर समय समय पर दांतों के डॉक्टर से दांत भी चेक करा लेना चाहिए ताकि डॉक्टर अंकल चेक करके ये बता दें कि कहीं दांतों में किसी तरह की खराबी तो नहीं आ रही।
2: और हाँ बच्चों, आप तो ये उपाय करें ही, अपने दोस्तों और जानने वालों को भी जागरूक करें ये बता करके कि दो बार ब्रश करना जरूरी है और सबको करना चाहिए। भोजन के बाद कुल्ला नहीं भूलना चाहिए।
1: अपने ब्रश को साफ रखेंगे, पुराने ब्रशों को फेंक देंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे, दांतों की सेहत संग मधुर मुस्कान भी बनाएंगे।
2: तो बच्चों, अभी आपने जाना कि दांतों की सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे हमें अपने दांतों को मजबूत बनाना है और कैसे उसकी साफ सफाई करनी है। और अब कुछ जानकारी की बातें और हैं बच्चों। हर हफ्ते हम आपको किसी न किसी प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप तो इनके बारे में जानते ही होंगे।
1: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे लेकिन अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर भारत के सबसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने।
2: बच्चों, बचपन में डॉक्टर कलाम पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार भी बांटते थे। उन्होंने कभी कठिन परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उनका मानना था कि मेहनत, अनुशासन और बड़े सपने इंसान को सफलता तक पहुँचाते हैं।
1: हाँ बच्चों, डॉक्टर कलाम के जीवन में उनके शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान था। उनके एक विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें पक्षियों की उड़ान का वैज्ञानिक कारण समझाया। उसी दिन से उनके मन में विमान और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। उनके शिक्षक हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। जीवन में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा।
2: बच्चों, एक समय वे भारतीय वायु सेना में पायलट बनना चाहते थे लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका चयन नहीं हुआ। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों, उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में इसरो तथा DRDO में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के रूप में काम किया।
1: भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके प्रयासों से भारत ने कई सफल मिसाइलों और अंतरिक्ष परियोजनाओं में सफलता प्राप्त की। सन 2002 से 2007 तक वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। बच्चों के प्रति उनके विशेष प्रेम के कारण उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। बच्चों, वे हमेशा विद्यार्थियों से मिलते थे और उन्हें बड़े सपने देखने तथा देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते थे।
2: बच्चों, डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि गरीबी या कठिनाइयां सफलता की राह में बाधा नहीं बनती यदि हमारे पास मेहनत करने का साहस, सीखने की इच्छा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
1: उनका प्रसिद्ध संदेश था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।
2: तो बच्चों, हमें उनके जीवन से बहुत तरह की सीख मिलती है। और क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि हमेशा बड़े सपने देखो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, असफलता से कभी मत डरो,
1: अपने ज्ञान का उपयोग देश, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करो, अपने ज्ञान का उपयोग देश और समाज की भलाई के लिए करो। बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज भी करोड़ों बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि साधारण परिवार का एक बच्चा भी अपने सपनों और मेहनत के बल पर महान व्यक्ति बन सकता है।
2: तो बच्चों, ये थे आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो हमें बच्चों से विदा लेनी होगी। लेकिन चलते चलते हम बता दें बच्चों, इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों, कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
0: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 4:35 पर सुनिए फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का और 5:02 पर युवाओं से संबंधित कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे।

औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग का वक्त होगा 5:30 पर, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6 बजे सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर खेती बारी, जिसमें आज चर्चा होगी पेड़ लगाए जीवन बचाए। साथ ही प्रश्नोत्तरी होगी मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खादों का उपयोग, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर रेशमा शिंदे। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:30 पर सुनिए हमारी दुनिया, जिसमें आज खोरठा वार्ता होगी पर्यावरण संतुलन के लिए वन जरूरी। वार्ताकार होंगी रितु घासी। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7 बजे और 7:11 पर जिले में आजकल। हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल का वक्त होगा 7:15 पर, जिसमें कविताएं सुषमा सिन्हा द्वारा सुनाई जाएंगी और कहानी रवि

शंकर सिंह। प्रस्तुति स्वर होगी प्रणव कुमार की और प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 7:45 पर संथाली समाचार पत्रिका और फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा समय आप जानते ही है 8 बजे से। 8:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और सुर्खियों में 8:30 पर।

8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे इवनिंग न्यूज और 9:15 पर उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका रेडियो स्कोप सुनिए 9:30 पर और इंदौर के टॉप श्रेणी की कलाकार विदुषी वर्मा अग्रवाल का संतूर वादन सुनिए रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में। रात 10 बजे से 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

ये थे आज के सांध्यकालीन प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम सांझ सरगम।

दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। काफी उतार चढ़ाव आते हैं इस जिंदगी में। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और इस सुबह की शाम कुछ अनुभव, कुछ तजुर्बे देकर जाती है। और अगर इस सांझ को सरगम का साथ मिल जाए तो ये शाम खुशनुमा हो जाती है। कार्यक्रम सांझ सरगम सुनने वालों को मेघना का प्यार भरा नमस्कार।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध से अभी आपने ये गीत सुना। इस गीत के गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम पर्वत से। इसके गीतकार है जानिसार अख्तर और संगीतकार है जयदेव।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
4: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
3: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
4: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
3: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
4: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: संदेश के बाद कार्यक्रम सांझ सरगम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म 3 Idiots से शान की आवाज में। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा ने।

0: आर डी बर्मन के संगीत में आनंद बख्शी का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत अमित कुमार की आवाज में फिल्म बालिका वधू से।
1: अच्छे लगते हैं
2: क्या

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। श्री जोशी ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के कार्यान्वयन का आकलन करने को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज खूंटी जिले के तोरपा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची में डुरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अब से थोड़ी देर बाद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जाएगा। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होंगे। इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। शाम के 5:02 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी संध्याकालीन सभा।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी कि शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम के 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। 6:30 पर विकास योजना पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा।

7:15 पर श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात के 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे गजलों का कार्यक्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। श्रोताओं, आज 26 जुलाई है जो कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन अमर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सन 1999 में कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को परास्त हमारी भारतीय सेना ने किया। 26 जुलाई आज ही के दिन भारत ने कारगिल पर विजय प्राप्त की और इसी ऐतिहासिक जीत की स्मृति में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसी क्रम में आज हम कारगिल के वीर शहीदों का नमन करते हुए जय भारती कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर के सर में।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं फिल्म में वीर जारा से। आवाजें हैं उदित नारायण, लता मंगेशकर, गुरुदास मान और पीथा मजुमदार की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जय भारती कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फनाहा फिल्म का ये गीत महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में।

चक दे इंडिया फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, जय भारती का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। किसान भाई बहनों, समय समय पर जहां तहां असमान बारिश होती रही है, हम सभी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खेती बाड़ी का कार्य निपटा रहे हैं और ऐसे भी भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ का खेल जैसा ही है। इसलिए हम सभी वैसे फसल या बीजों का चयन करते हैं जो अल्प अवधि और अल्प वर्षा जैसी स्थिति में भी हो जाए। इसके अलावा अतिरिक्त आय हेतु अन्य कार्य भी करते हैं जिसे करके हमें अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुर्गी पालन, बत्तख पालन, पशुपालन, गोपालन, मधुमक्खी पालन, तसर कीट पालन या कुटीर उद्योग के रूप में कई प्रकार के रोजगार के माध्यम हैं जिन्हें किसान भाई अपना सकते हैं। और किसान भाइयों, हमें लाहकीट पालन भी हमारे झारखंड प्रदेश क्षेत्र में काफ़ी उपयुक्त माहौल है, जो कि पलास, बैर, कुसुम तथा सेमेलता के पेड़ पौधों में भी आसानी से कर सकते हैं। स्थानीय बाजारों में इनका मूल्य भी बहुत अच्छा है और इन्हें करने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं और 2.5-3 महीने में भी ये तैयार हो जाते हैं। इनसे कई प्रकार के उपयोगी वस्तुएं जैसे आभूषण, जरूरी सामान, चूड़ी, कंगन, महिलाओं के लिए सजावटी वस्तुएं आदि बनते हैं। इसके लिए करने के पूर्व भी जो पेड़ हैं उनके डालियों को छंटाई करते हैं और नए नए टहनियाँ निकल जाते हैं जिसमें लाह कीट अच्छी तरह से पकड़ते हैं और बढ़ते भी हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इस काम को जरूर कर सकते हैं। अपने खेती बाड़ी के अलावा लाह कीट पालन आपके आसपास में बैर, पलास या कुसुम का जो भी वृक्ष है, इन सभी वृक्षों में आप कर सकते हैं। इनके लिए कोई मिट्टी या पानी या खाद किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, बस वृक्ष के टहनियों में आराम से कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। इनका मूल्य हमारे बाजारों में भी काफ़ी अच्छा मिलता भी है। तो खेतीबाड़ी के साथ साथ आप इन्हें भी अपनाएं और अपने परिवार को, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, खुशहाल रहें। इस चर्चा के पश्चात हम और भी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानकारी भी देंगे। आज हमारे बीच में हैं विमल कैबर जी, जो कि बत्तख पालन से हमारा कितना आय होता है, कैसे हम पाल सकते हैं, इनके लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पूर्व हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

0: अमीन माझी एवं साथियों के स्वर में अभी हम आनंद ले रहे थे इस नागपुरी लोकगीत का। और इस लोकगीत के पश्चात किसान भाई बहनों, आइए मिलते हैं एक बत्तख पालक किसान भाई से और विस्तृत जानकारी लेते हैं कि बत्तख पालन से संबंधित हम किस तरह से इसे अपना सकते हैं और इसका एक रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। किसान भाई बनो, आज हम खेती गृहस्थी कार्यक्रम में एक ऐसे युवा कृषक से मिल रहे हैं जो खेती के साथ साथ ये बत्तख पालन भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और बत्तख पालन में जो खास बातें हैं इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार
1: जोहार।
0: तो उदय जी, हम देख रहे हैं कि आप खेती बाड़ी में भी काफ़ी ध्यान देते हैं, इसके साथ साथ जो पक्षी या पशु पक्षी जो पालन है या उसमें बत्तख पालन जो है ये भी आप शुरुआत किए हैं, और ये शुरुआती दौर में भी आपका जो रहन सहन है का देखभाल है बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इतने सारे बत्तख आप पालने के लिए कैसे सोचे और कब से शुरुआत किए?
1: जी, मैंने सोचा कि बत्तख जो इसमें है कि बेनिफिट में पहले देखा,
0: हाँ।
1: फिर कांटेक्ट हुआ कि चूजा, फिर मंगाया मैंने।
0: अच्छा।
1: बाहर से ये छोटे छोटे चूजे थे उसे मैंने मंगाया, और इसमें अभी स्टार्टिंग है।
0: हाँ।
1: अभी 2 महीना हो रहा है मेरा पालन करके।
0: अच्छा।
1: स्टार्टिंग और अभी बढ़िया ग्रोथ है बत्तख।
0: अच्छा।
1: में भी
0: हाँ।
1: और इसमें एक चीज़ खास है कि इसमें आपको देखना पड़ता है कि फीड कौन सा चला रहे हैं, कैसा चला रहे हैं, खाने पीने पर
0: अच्छा।
1: सबसे अधिक।
0: हाँ, ग्रोथ के लिए तो खाना पीना बहुत जरूरी है, और प्रोटीन जो भी प्रोटीन युक्त उनका जो खान पान होना चाहिए देना पड़ता है। तो दिन भर में कितने बार देना पड़ता है इसको खाने पीने के लिए?
1: जी, मैं तो अभी 3 बार चला रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: सुबह, दोपहर और शाम को, तीनों तीनों टाइम, जिसे बत्तख के अनुसार।
0: हाँ।
1: जितना बत्तख वही सबसे पहले तो मैंने पोल्ट्री फीड कुछ यूज किया था मिनिमम।
0: अच्छा।
1: 1 महीना जैसा, और इसके अभी तो हरा चारा साथ में भूसी ये सब अभी यूज कर रहे हैं।
0: अच्छा, ये सब मिला जुला के मैंने सब एक साथ मिला करके उसको सान करके देता हूँ।
1: जी हाँ।
0: अच्छा,
1: वही सब सान का भी चला रहे हैं।
0: अच्छा, बत्तख जो है ये अधिकतर पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे देसी बत्तख की अगर तुलना करें तो फिर वो दिन भर पानी में रहते हैं, तालाब में, नदी में, कहीं भी। तो उसकी तुलना में क्या ये जो मध्यम आकार के जो अलग नस्ल हैं ये पानी में भी रहते हैं कि दोनों जगह इसके लिए सुविधाजनक?
1: जी, ये मध्यम आकार के जो बत्तख हैं, मेरा अनुभव के हिसाब से ये तो उतना मायने नहीं रखती है कि पूरे दिन भर पानी ही में रहे।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये तो उतना मन थोड़ा अगर पानी मिले तो भी काफ़ी है इनके लिए।
0: अच्छा।
1: पूरा दिन भर पानी में नहीं रहते हैं लोग, क्या कि एक तो ये बत्तख हैं कि क्या बताएं आपको, खाने जो खाने के बाद थोड़ा बहुत जो चोंच सब गीला हो जाता है, जो गंदगी होते हैं उसको
0: धोने के लिए
1: कुछ देर पानी चाहिए। और या तो हो सकता है आप डब में किसी में, या तो थोड़ा सा डुबा हुआ बना के भी रख सकते हैं इसको।
0: अच्छा,
1: थोड़े
0: अच्छा।
1: से पानी में भी आप बत्तख बढ़िया से पालन कर सकते हैं अधिक बत्तख।
0: अच्छा अच्छा मैंने खाने के बाद जो चोंच है उनका गंदा होने से वो धोते हैं और थोड़ा बहुत तैरते हैं या फिर खेलते कूदते उनका थोड़ा सा मैंने खेल ये टाइम बीत जाता है ना?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, इस तरह से इसके बाद आप कोई सूखे जगह में भी एक जैसे गौशाला के रूप में जो उस बत्तख पालन का जो एक तो शेड होता है उसमें रख सकते हैं क्या?
1: उसके बाद जी सर, रख सकते हैं आराम से। अब इसमें शेड बना लीजिए।
0: अच्छा।
1: उसमें शेड बनाने के बाद आप देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा साइड में, अगर आप जहाँ पर शेड बनाए हैं अगर हो सकता है सटा हुआ अगर हो आपका कोई डोबा हुआ बना लेते हैं।
0: हाँ,
1: तो सबसे बढ़िया उसमें रहेगा। जब भी बत्तख मन करे तैरने के लिए चल जाएगा।
0: अच्छा।
1: फिर इसमें कहा तो खोने का डर नहीं रहता है।
0: हाँ, गेट खोल दीजिए,
1: सीधे तालाब में चल जाएंगे। या तो ऐसा रहता है खुले जगह में छोड़ने से रहता है कि किसी पशु पक्षी का डर लगा हुआ रहता है नुकसान पहुंचाने के लिए। तो
0: कुत्ते भी कभी कभी आक्रमण कर सकते हैं।
1: तो इसी चलते हम लोग करते हैं कि एक ही जगह पूरा ग्राउंड करके
0: उसके सामने
1: सामने में रख डोबा के निर्माण, छोटा सा डोबा के निर्माण करके उसी से अभी हम लोग पालन कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बरसात में कोई समस्या तो नहीं होती पानी के लिए, लेकिन जब गर्मी की बातें करें तो आप गर्मी में शुरुआत किए थे तो उस समय तो पानी का कभी असुविधा होती होगी, और कैसे व्यवस्था किए पानी के लिए?
1: जी, पानी की तो असुविधा हो रही थी, तो मैंने तो थोड़ा सा नदी मेरे सामने में है।
0: हाँ।
1: तो नदी के द्वारा मैंने तो मशीन फिट किया हुआ था।
0: अच्छा अच्छा
1: जो पानी मशीन, उसके माध्यम से मैंने पानी अपने डोभा तक पहुंचाया था।
0: अच्छा,
1: क्योंकि पानी अधिकतर जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा पानी मैंने डोभा में चला के स्टॉक किया था, उसी से बत्तख पालन स्टार्ट किया था मैंने।
0: अच्छा। हाँ,
1: और
0: और कुछ जल संग्रह करके मैंने कुछ दिन उसमें तो पानी से ठहरता ही होगा, और जब खत्म होने से फिर एक बार भर देते हैं।
1: पुनः जी पुनः भर देता हूँ उसको।
0: अच्छा। तो ये जो बढ़ने का जो गति देख रहे हैं, बहुत जल्दी बढ़ भी रहे हैं, तो कितने दिनों में जब चूजे लाए थे और उतने दिनों के बाद अभी जब देख रहे हैं थोड़ा सा बड़े भी हो रहे हैं, तो कितने दिनों में बेचने लायक हो जाते हैं?
1: जी ये तो अब 3 महीना तो अब बेच सकते हैं इसको आराम से।
0: अच्छा।
1: और ये बत्तखें हैं कि 4 महीना तो मैं अंडा देना स्टार्ट कर देती है पूरा पूरी। और उसके बाद से अब अंडा लेना स्टार्ट कर सकते हैं 4 महीना से। अगर बढ़िया से अब अगर देखभाल करते हैं फिर अगर सही चलाते हैं तो अब आराम से 4 महीना में अंडा ले सकते हैं।
0: अच्छा। हाँ, तो एक दिन एक चीज ऐसा देखा जाता है कि देसी जो बत्तख है वो इसके तुलना में शायद कम अंडे देते हैं, और उनका देखभाल भी कुछ अलग होता है, तो क्या उनके तुलना में ये अंडे ज्यादा देते हैं क्या?
1: जी हाँ सर, इसमें होती है कि देसी अंडे हैं कि बहुत से बहुत 30-35 को अंडा देते हैं।
0: हाँ,
1: और इसमें है कि आप 250 से 300 अंडा ले सकते हैं कि बतख से एक साल में,
0: साल भर में।
1: साल
0: अच्छा
1: भर में।
0: अच्छा
1: यही है कि
0: हाँ
1: इसमें बेनिफिट ज़्यादा है अगर अंडा में देखा जाए तो। कोई
0: अच्छा।
1: कोई ऐसा आता है कि अंडा के पर्पज से भी पलते हैं और कोई तो मीट के पर्पज से भी पलते हैं बतख। मैंने तो
0: और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो अपना कभी कोई पूजा पाठ रहता है, मानसिक करते हैं, ये से मान्यता आते हैं, तो उसे ही खरीदने के लिए आते हैं ना?
1: जी हाँ सर, मेरे यहाँ तो अभी तो बहुत कोई आ रहे हैं लेने के लिए। इससे मनसी उसे करते हैं, मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, अन्य भी पूजा पूजा है तो लोग आ जाते हैं। या तो जिसको खाने की जरूरत रहती है तो मेरे यहाँ भी यहाँ तो पहुँच रहे हैं आदमी लेने के लिए। पता
0: अच्छा।
1: उता करते हुए धीरे धीरे आ जाते हैं लोग। और लोग अभी सही रेट में भी लोगों को मिल जाता है और मेरा भी सही अभी तो सेल हो रहा है।
0: अच्छा। तो बिक्री किस तरीके से बेचते हैं, जैसे कि इसका जो साइज है, जिस माने आकार के हैं उसके हिसाब से कि वजन करते हैं कि किस तरह का होता है?
1: अभी तो हम लोग वजन नहीं कर रहे हैं, इसे फीस के हिसाब से बेच रहे हैं
0: अच्छा।
1: क्योंकि अधिक बतख होने के कारण हम लोग फीस से भी दे रहे हैं।
0: हाँ, तो जितने भी खरीदार हैं वो क्या जानकारी होने से आपके घर तक आ जा रहे हैं कि कहीं बाहर भी ले जाना पड़ता है ऐसे?
1: जी नहीं, अभी तो मैंने तो बाहर नहीं भेजा हूँ क्योंकि अभी जितने भी आ रहे हैं सब घरे से ले जा रहे हैं। अभी
0: हाँ, धीरे धीरे जानकारी
1: धीरे
0: भी
1: धीरे
0: हो रही
1: जानकारी
0: है।
1: हो रहा है तो अभी तो मेरे घरे से इतना सेलिंग हो रहा है कि बाहर अभी भेजने का जरूरत नहीं पड़ा है। अगर हो सकता है, अगर नहीं हो तो बाद में धीरे धीरे हो या अधिक हो जाएंगे तो फिर बाद में मार्केट पकड़ेंगे, बाहर भी भेजा जाएगा उसके बाद।
0: हाँ, मैंने इस व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाना है तो थोड़ा सा आगे भी निकलना भी होगा ना।
1: जी हाँ
0: अच्छा। और आगे ये बताएं कि जो भी आप खिलाते हैं उसे दिन भर में मैंने 3 बार या 2 बार खिलाना पड़ता
1: मेरे मैं तो अभी 3 बार चला रहा हूँ फीड। आप चाहे तो सुबह और शाम भी फीड चला सकते हैं।
0: है? अच्छा।
1: दोपहर का थोड़ा सा खुलच में छोड़ दिए, हरा उरा अगर चरा इसमें घास उस भी खा लेते हैं आराम से। या
0: अच्छा।
1: तो तैरते तैरते अगर दलदली अगर है तो इसे तो सभी खाएंगे। अब जब बढ़िया अगर फिर चलाते हैं तो 2 टाइम भी चला सकते हैं सुबह और शाम को।
0: अच्छा, रखने का जो स्थल है वो किस तरह का होना चाहिए? हमेशा मैंने साफ सफाई करते रहते हैं कि ऐसे ही रहता है और 4-5 दिन में सफाई करते हैं, कैसे रहना चाहिए?
1: जी मेरा अनुभव तो अभी जितना तो हुआ है कि अब उसमें तो साफ सफाई बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: और जहाँ बत्तख रखते हैं वहाँ पर नमी नहीं होना चाहिए क्योंकि नमी होगा तो फिर कवक वक होगा इसमें
0: हाँ
1: कि बीमार होने में बहुत चांस रहता है इसमें।
0: अच्छा। हाँ,
1: अब उसको सावधानी बरतना पड़ता है कि हाँ जहाँ हम लोग पालन कर रहे हैं वो जगह अंदर में हम लोग फीड नहीं डालते हैं खाने के लिए। हम
0: अच्छा,
1: लोग
0: बाहर
1: पहले
0: निकाल
1: बाहर
0: के।
1: निकाल के हम लोग खिलाते हैं फिर
0: अच्छा।
1: बाद में घुसा देते हैं रिटर्न।
0: हाँ, ऐसे में गंदा भी नहीं होगा और सूखा भी रहेगा जो रहने का स्थल
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और मैंने हमेशा हवादार होना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, ये कोशिश करते हैं।
1: जी हम लोग सूखा रहने की बहुत अधिकतर कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हम लोग जो बनाए हैं फिर
0: रहने का
1: बतख
0: जगह।
1: रहने के लिए उसको सूखा ही अधिक रहे,
0: अच्छा
1: नमी ना पहुंचे।
0: अच्छा बीमारी मैंने इसमें अभी तक कुछ हुए हैं कि किस तरह का कोई होने का कोई ये रहता है आगे? मैंने जैसे जो मुर्गियों के होती हैं या फिर अन्य जानवरों के होते हैं, वैसा कुछ बीमारी वगैरह होती है क्या?
1: जी बीमारी तो होती है फिलहाल मेरे यहाँ तो अभी तो बीमारी नहीं पहुँचा है क्योंकि
0: अच्छा।
1: मैं जब चूजा लाया था तो उसमें एंटीडोट जो होती है उसमें मैंने तो चलवाया था डबल। एक वो सप्ताह में होता है, एक वो 15 दिन में। ऐसे मैंने तो चलवाया था 2 एंटीडोट जो एंटीबायोटिक किया के तौर पर। तो
0: हाँ।
1: मेरा बच्चा में तो अभी तो बीमारी कुछ आया नहीं है।
0: अच्छा। मैंने सही देखभाल होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान देने से ये सब बीमारी से भी दूर रख सकते हैं
1: जी
0: ना?
1: हाँ रख सकते हैं आराम से।
0: अच्छा। तो आगे ये बताएं कि आप इनके साथ साथ और भी काम करते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में क्या घर के लोग भी इनका देखभाल और थोड़ा सा मैंने ध्यान देते होंगे?
1: जी हाँ, मेरा घर में अभी पूरा सहयोग है, मेरा बतख पालन में भी और अन्य कामों में भी, जैसे मेरा पूरा परिवार मेरा सहयोग करते ही है,
0: हाँ
1: अभी इसमें भी सब पूरा परिवार मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं अभी,
0: तब तो अच्छी
1: ताकि
0: बात है।
1: मैं आगे थोड़ा बढ़ा सकूँ
0: हाँ
1: और एक सेट बना सकूँ बढ़िया से।
0: मतलब ये शुरुआती दौर है और आगे आप इसमें अच्छी तरह से हो तो आगे बढ़ा सकते हैं ना।
1: जी हाँ, मैं अब सोचा कि अभी अधिक से अधिक जगह में मैंने अभी बतख ला के अधिक मुनाफा भी ले सकूँ
0: हाँ सही बात
1: और पालन कर पाएँ।
0: तो हमारे श्रोता जो अभी इस बात को सुन रहे हैं और जो इच्छुक हैं करना भी चाहते हैं इस तरह का बतख पालन के बारे में, तो शुरुआती दौर में ये कहाँ से संपर्क करें और कितने तक मैंने पूंजी होने से ये शुरुआत कर सकते हैं?
1: जी हाँ, मैंने तो ज़्यादा पूंजी पहले नहीं लगाया था। अगर अब चूजा लेते हैं स्टार्टिंग में, अगर छोटे चूजा तब को नहीं नहीं 25-30 रुपये में आ जाती है प्रत्येक चूजे की फीस में, और अगर बड़े चूजा लेते हैं अगर तो 50-60 रुपया में आ जाती है। आप आपका जगह के अनुसार कितना जगह है उस हिसाब से आप बतख चूजा मंगा सकते हैं। और ये सिंपल है कि अभी तो आप यूट्यूब यूट्यूब में सर्च करते हैं उसमें भी नंबर मिल जाता है अभी, या तो कोई चाहे तो हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकता है, हम लोग भी मंगवा दे सकते हैं। अभी तो हम लोग का कांटेक्ट है और हम लोग ऐसे अभी स्टार्टिंग किए हैं कि अगर बत्तख हम लोग भी हैच करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अंडा अगर सक्सेसफुल होते हैं तो हम लोग का यहाँ भी मिल जाएगा।
0: सही बात है और कोशिश भी काफ़ी अच्छी है और इस तरह अगर हो जाए तो फिर आने वाले जो भी बेरोजगार युवक हैं और करना चाहते हैं तो वो भी इस काम को अपना व्यावसायिक तौर पर कर सकते हैं और अपना रोजगार में आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं क्या?
1: जी सर, बहुत इसमें मेरे हिसाब से बहुत अधिक इसमें बेनिफिट है। और 100 चूजा अगर पलते हैं तो नहीं नहीं इसमें एक दिन का अगर बेनिफिट अगर आप पकड़ते हैं 1 रुपया बत्तख में भी, तो नहीं नहीं इसमें आप एक जब रेडी हो जाती है तो नहीं नहीं आपका इसमें 50-60-70 हज़ार रुपये 100 चूजा में कमा सकते हैं आप। अगर 500 चूजा रख लिए तो नहीं नहीं आपको 1-1.5 लाख रुपया से कहीं कम में नहीं बिकेगा
0: सही बात है
1: बत्तख,
0: सही।
1: इसमें बहुत ज़्यादा अधिक मुनाफा है, कम खर्चा में अधिक मुनाफा है।
0: हाँ तो इस तरह से सोच रख करके इसको मैंने शुरुआत करनी चाहिए और इच्छा व्यक्त करते हुए अपना जो जिस काम को आप शुरुआत करना चाहते हैं उसको भलीभांति जानकारी लेकर ही करनी चाहिए। अच्छा इस कार्य के लिए आप कहीं किसी से संपर्क किए थे या फिर कोई प्रशिक्षण वगैरह भी लिया था क्या?
1: मैंने तो प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन मैंने किसी से संपर्क किया था उस दिन, उनके वहाँ पर मैं गया था, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, क्या दवा हुआ सारा चीज़ मेरे को बताया, अगर कोई बीमारी होती है कौन सा बीमारी ऐसे लक्षण मेरे को ये सब मेरे को बताया मेरे को पहले, वही उसी अनुसार मैंने अभी पालन करना स्टार्ट किया। मेरे यहाँ तो अभी तो कोई बीमारी नहीं लगी है, और बीच बीच में मैं कहता कि इसमें हल्दी और वो बताया आपको तो लहसुन अदरक ये सब का पेस्ट जो आता है उसे पानी में पिलाते रहता हूँ हर 15 दिन में एक बार।
0: हाँ सही बात है। हल्दी तो ऐसे भी एंटीबायोटिक है और चाहे वो पशुओं के लिए हो जानवरों के लिए या फिर कोई व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा चीज़ ही है,
1: जी हाँ सर,
0: तो इन सब का इस्तेमाल करके मैंने अभी तक सब कुछ सुरक्षित भी हैं और अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और अभी आगे और भी बढ़ेंगे जिस तरह का मैंने ग्रोथ है उस हिसाब से और कुछ दिन में तो और ज़्यादा बढ़ेंगे ना।
1: जी सर, मेरा अभी 700 से 800 ग्राम की हो चुकी है बत्तख वेट, ये नहीं नहीं कुछ दिन में ही अभी 1 से 1.5 kg हो जाएगी बत्तख वेट।
0: तो इस तरह से मैंने देसी की तुलना में ये सब पालन करना भी एक व्यावसायिक तौर पर बहुत ही अच्छा फायदेमंद है ना।
1: बहुत फायदा है सर इसमें तो।
0: तो आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे जितने भी श्रोता हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हो सकता है वे भी अपने इस धंधा को अपनाएंगे, तो आपके इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
1: जोहार सर, धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों अभी हम मिल रहे थे एक बत्तख पालक किसान भाई से जो अतिरिक्त आय के लिए आप बहुत सारे ऐसे रोजगार का माध्यम अपना सकते हैं और बत्तख पालन भी इनमें से बहुत अच्छा रोजगार का माध्यम है, तो अपने जगह के अनुसार आप भी इन्हें अपना सकते हैं और बहुत सारा ऐसे इससे समस्या है और अंडे के रूप में हो या फिर विक्रय के रूप में हो कई रूपों में इसे हम रोजगार के लिए का माध्यम बना सकते हैं। तो इस मुलाकात के पश्चात हम पुनः मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक कुरमाली लोकगीत संतोष महतो एवं साथियों के स्वर में।

तो किसान भाइयों, अभी हम आनंद ले रहे थे इस कुरमाली लोकगीत का, और कलाकार थे संतोष महतो एवं साथीगण। और इसी लोकगीत के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप कमलेंदु को विदा दें, सभी को पुनः एक बार जोहार।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। शाम के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला चरम पर है। इस बीच केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह आज गुड्डा जिले में बीएलए के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति और वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने पर विशेष बल दिया। राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला और खूंटी समेत कुछ अन्य जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल इन दोनों के अलावा रांची और लोहरदगा में भी भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची के डुरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जा रहा है। इससे पहले टूर्नामेंट का आज रंगारंग आरंभ हुआ। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होंगे। इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हुआ खड़ा कार्यक्रम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं। परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, आज के इस विदा कार्यक्रम में हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन हम भारतीय सेना के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। श्रोताओं, कारगिल युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। दुश्मन सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर कठिन परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की और अंततः 26 जुलाई सन 1999 को भारत ने विजय प्राप्त की। श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस हमें देशभक्ति, साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर देशभर में शहीदों की सम्मान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है और स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है तथा विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्रोताओं, हमें अपने सैनिकों के त्याग और बलिदान का सम्मान करना चाहिए तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। कारगिल के वीर सैनिकों का साहस और बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। श्रोताओं, शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका साहस और देश प्रेम आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता है। उन वीर सपूतों के बलिदान के स्वरूप ही आज हम सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। इसलिए श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी वीर शहीदों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन सभी वीर सेनानियों का नमन करते हैं। कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं यह देशभक्ति गीत।

0: कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं यह भेंट वार्ता। बुजुर्गों की आम समस्याएं और उनका होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोहर दत्ता और उनसे बातें कर रही हैं पीएम मंजीव बोत्रा।
1: आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय खुद ही दें।
3: मैं मनोज दत्ता बोल रहा हूँ, चाईबासा निमरी से। हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं।
1: तो हम चाहेंगे, जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, तो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती जाती है। तो आज हम बातें करेंगे कि बुजुर्गों में क्या क्या आम बीमारियां होती हैं।
3: बुजुर्ग में आम बीमारी होता है जॉइंट पेन, है ना, माथा में दर्द, ये सब ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं। ठंडा लगने से छाती में दर्द, कमर में दर्द, है ना, ज़्यादा क्या होता है, बुखार आते हैं, ये सब होते हैं मौसम में। अभी ठंडा का मौसम लगने से जैसे समर सब ज़्यादा है, जो गला में दर्द, सर्दी खांसी, है ना, अभी मौसम में सर्दी खांसी सबसे ज़्यादा होता है गला में दर्द। इसे गर्म का दर्द के लिए आपको कम से कम गर्म पानी पीना जरूरी है, गर्म पानी से नहाना जरूरी है, इस सब पर जरूरी है। दवाई का नाम बोलना आपको,
1: हाँ, बोल दीजिए।
3: हाँ, जैसे गला में दर्द हो रहा है, जो बाई हम लोग का होम्योपैथी दवाई है, एक तो बेलोडोना है 30 पावर का, दिन में 3 बार खाइएगा। हाँ, एक तो वैराइटी कार्ब है, उसको आपको 2-3 बार खा सकते हैं, आपको गला का समस्या दूर हो जाएगा। उसके बाद बुखार के लिए आपको बुखार जो आते रहते हैं, बुखार का भी हम लोग का काम करेगा दोनों दवाई, बहुत अच्छा दवाई है। आप खा के आप लोग देख सकते हैं, खिला भी सकते सबको। उसके बाद जैसे आपको बुजुर्ग का दर्द का कमर का दर्द का बाइनिया को दवाई है, बाइनिया 30 बोल के उसको दीजिए, राष्ट्र 30 दीजिए, कमर का दर्द के लिए समस्या बहुत अच्छा काम करेगा। ये मौसम ठंडा मौसम के लिए दोनों दवाई बहुत अच्छा दवाई।
1: तो ये जो कमर का दर्द बुजुर्गों में होता है प्रायः, तो इसमें क्या वजह है कि
3: कोई वजह बोल के नहीं है, ठंडा का मौसम है ऐसे ही आदमी को ठंडा लगने से ये सब होते रहता है।
1: तो ठंडा का मौसम नहीं भी रहता है, जैसे
3: ठंडा मौसम कैसे बता दे रहा आपको, जैसे हम लोग को ठंडा घुसते रहता है, ठंडा निकालने रहते हैं, वही टाइम में ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग का बोले, ऐसे आदमी लोग को ठंडा बुखार ज्वाइंट पेन, माथा में दर्द, खांसी, सर्दी होते रहता है। अब बीच में जो ठंडा रहेगा उसमें बीमार नहीं होता, ठंडा जाने टाइम आने टाइम सबसे ज़्यादा बीमारी होती है।
1: पैरों में दर्द भी रहता है और ये नस खिंचाने की
3: उम्र के लिए खून का कमी से होते रहता है, इसे भी नस खिंचाता, खून का कमी होता है, तो होता है। उसके बाद बहुत उम्र बार होने से ब्रोंकाइटिस निमोनिया हो जाता है, जो उसका लिए थोड़ा नस को खिंचाता है, इस सब के लिए होते रहता है। इसीलिए हम लोग जब ठंडा के लिए होता है ना, इसीलिए बाइनिया राष्ट्रक 1 नंबर दवाई है, वो खिलाइएगा तो बहुत हद तक मैंने पेशेंट ठीक हो जाएंगे।
1: तो उसमें खान पान पर भी तो ध्यान देने की जरूरत होती है,
3: पानी का व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। अब दही, आपको दही हो गया, केला वाला, ये सब थोड़ा नहीं खाने से,
1: बुजुर्गों को नहीं
3: खाना अच्छा है। यानी गला का दर्द के लिए तो आपको दही तो पूरा बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी समस्या ज़्यादा हो रहा गला का दर्द, खांसी होने साथ गला का दर्द हो रहा, गला का दर्द के लिए बहुत हम लोग को इंग्लिश दवाई में देता है लेकिन काम नहीं करता। बाद में हम लोग होम्योपैथी दवाई लेने आता है तो दर्द में खा मैंने गला का दर्द दवाई खाने की, ज़्यादा आदमी का गला दर्द होता है तो हम लोग आता है पेटेन एक्टो 20 दवा, वही हम लोग देते हैं सबको।
1: अच्छा, तो आजकल देखा जा रहा है जैसे कि खांसी, सूखा खांसी, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और खांसी होते होते बाद में हो क्या रहा है कि नाक ओक वगैरह में घाव भी हो जा रहा है,
3: लेकिन
1: तो
3: नाक खांसी होता है जो ना, जो हो रहा ना नाक के जैसे घाव हो रहा है, तो हम लोग एक हिपा स्थल पर दवाई है हम लोग पास, वो नाक के घाव को दूर कर देगा। नाक का दवाई का उसको पूरा खिलाइए, नाक का दवाई सूख भी जाएगा और सर्दी खांसी भी ठीक हो जाएगा। तो उसका दवाई भी एक तो घाव को सूखने का दवाई है, नाक में घाव जैसे हो जा रहा ना, वो आप हिपा स्थल आपको पूरा ठीक करेगा।
1: तो ये जो उस तरह की समस्या जब हो जाती है तो खान पान किस तरह के ध्यान
3: रखने की जरूरत है? ठंडा बासी को खाना बंद करने पर, बासी चीज नहीं खाइएगा, ठंडा चीज नहीं खाइएगा, हाँ ये सब खाना बंद करना पड़ेगा। और होम्योपैथी दवाई में एक तो है जो खांसी के लिए, तो होम्योपैथी दवाई सबसे बेटर दवाई है। जैसे अभी बुजुर्ग लोग जो खांसे खाते पेशाब कर देते हैं, उसके लिए हम लोग कॉस्टिंग बोल के दवा है, हम लोग है कॉस्टिंग 30 हम लोग देते हैं पेशाब को बंद करने के लिए। बहुत बुजुर्ग खाते रात को, एक बार सुबह खांसते हैं रात को खांसते हैं, उसका लिए अलग दवाई है। ये होम्योपैथी है तो जो अलग अलग दवाई बहुत दवाई बनाई है, वैसे पेशेंट को देखते हैं हम लोग दवा देते हैं। इसीलिए जैसे आपको पेशाब का लिए कॉस्टिंग सबसे अच्छा दवा है, वो बुजुर्ग लोग जो पेशाब करते हैं उसका लिए बहुत अच्छा दवाई, आप लोग खिला के दे सकते हैं तो बोलिएगा कैसे।
1: जैसे कि अभी आपने चर्चा की थी निमोनिया हो जाता है ना, तो निमोनिया तो प्रायः बच्चों को होता है,
3: बच्चों को भी होता है, बड़ा को भी होता है निमोनिया।
1: अच्छा, बुजुर्ग
3: बड़ा को होता है जो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, निमोनिया ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, कैंप का ठंडा का बोलता होता है। ठंडा ज्यादा लगने से, ज्यादा बहुत दिन सर्दी रहने से निमोनिया पकड़ लेते हैं।
1: अच्छा।
3: एक दवा दौड़ नहीं कर रहे, ठंडा में आपको घूम रहे फिर रहे हैं, कोई भी नहीं है, उसमें तो निमोनिया होता ही। निमोनिया के लिए हम लोग दवाई, अच्छा दवाई एमपीएम टाट बोल के दवा है, बहुत अच्छा निमोनिया के लिए काम करते हैं।
1: तो मान लिया किसी को निमोनिया हो जाता है तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए?
3: ठंडा से बचना पड़ेगा, है ना, ठंडा पानी से नहीं नहीं नहाना पड़ेगा, इससे को बचना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का जो घरेलू उपाय है, जो तुलसी पत्ता अदरक और हल्का दे के अपना सेवन करने से वो कम होता है, तो मधु मिला देंगे तो वो अच्छा है,
1: वो भी खा सकते हैं। होम्योपैथी में आप होम्योपैथी का दवा खिलाने के साथ साथ ये घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। और साधारण खाना में क्या दे सकते हैं? चावल खा सकते हैं?
3: चावल दोपहर को खा सकते हैं, रात को चावल खाना ठीक नहीं, रोटी वोटी खाना ठीक है ना। तो आदमी क्या करता है, दही को ज्यादा सेवन करता है, ठंडा बोल कम ठीक होता है, दही तो गर्म है बोलता है, दही गर्म नहीं है, ठंडा भी हो गर्म भी दोनों काम करता है, दही समझ गए, इसीलिए उसको संभाल के रहना पड़ेगा, ठंडा बची नहीं खाना पड़ेगा। जितना आप लोग ठंडा को बचिएगा उतना अच्छा है। इस बार देखिए जैसे बरसा भी गिरा वैसे ठंडा भी गिरा, बहुत साल के बाद ठंडा गिरा है, बहुत साल के बाद गिरा।
1: अभी जो है ना इन दिनों देखा जा रहा है कि प्रायः ये खांसी है ना, खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, ये वायरल भी होता है क्या?
3: वायरस तो नहीं होता, ठंडा
1: मतलब एक दूसरे पर भी लगता है क्या?
3: ये सब नहीं होता ना,
1: वैसे कोई बात नहीं, शरीर में कुछ कमी होने से ही, कमजोरी होने से ही होता है,
3: कमजोरी होने से होता है, ठंडा लग जाता है। जैसे हम अभी बाहर में निकल गए, सिर में मरपट नहीं लिए, गला में कुछ बांधे नहीं है ना, एक हल्का कपड़ा पहन के निकल गया, ठंडा तो पकड़ भी करेगा,
1: पकड़ करेगा,
3: तो उसी में ठंडा लग जाए, लगने से गला में दर्द है, खांसी होगा, नाक बंद हो जाएगा, आँख से पानी गिरेगा, ये समस्या होते रहते सब। अभी तो ठंडा में तो ही आ रहा है, आँख से पानी गिरा है, सर्दी खांसी हो रहा, गला में दर्द,
1: गला में दर्द हो रहा है,
3: नाक को नाक बंद हो जा रहा है, ये सब होते रहते हैं। नाक बंद हो जाते हैं तो हम लोग घर को उपाय करते हैं, बोलते हैं हल्का सरसों तेल लगा के सो जाइए, नाक का भी अपना रास्ता खोल जाता है, आराम से सो सकिएगा।
1: और जैसे कि खास करके महिलाओं में है ना, महिलाओं में जैसे जैसे वो उम्र बढ़ता है तो एक समय आता है वो उनको मेनोपॉज आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में कुछ परेशानी होती होगी?
3: देखिए परेशान उम्र लोग परेशान होना ही है, लेकिन उम्र लोग तो अभी बच्चा हो जाता है, उम्र होने से बच्चा हो जाता है, वो बच्चा को मरे है ना, वो बोलेगा हम ये खिलाइए वो खिलाइए, देने से मुश्किल है, खाने से कुछ ना कुछ पेट खराब होगा, माथा में दर्द होगा, लेट्रिन होने जाएगा। जैसे हम लोग को मैंने 60 पार होते हैं, 70 पार होते हैं, बुजुर्ग जितना भी बड़ा है बुजुर्ग सब बच्चा बन जाते हैं, वो ज्यादा खाने का मन करते हैं, ज्यादा ही करने घूमने को, आप बोलिएगा मन नहीं नहाइए ना नहाने जाएगा, ये सब होते रहता है।
1: तो उनको तो खास तरह के

0: खान पान खान पान की जरूरत है,
1: देखना पड़ेगा। हाँ। ज्यादा मत खिलाइए, बार बार दीजिए लेकिन ज्यादा एक साथ मत दीजिए, हल्का हल्का देना होगा, थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा।
0: किस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं किस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए?
1: देखिए लोग ठंडा बासी लोग नहीं नीचे बढ़ते, बुजुर्ग लोग को, बुजुर्ग मतलब बच्चा हो है ना, उस लोग को जैसे आप लोग बच्चा लोग को देखते हैं देखभाल करते हैं, उसे बुजुर्ग लोग को देखभाल करना पड़ेगा, यही समस्या रहता।
0: और महिलाओं में, महिलाओं में कोई खास परेशानी होती है?
1: महिला बहुत आपको पानी ज्यादा काम करने से होगा, इसमें काम करने से होगा, पानी से बचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सर हम दिन भर पानी में काम करते रहते हैं, ज्वाइंट का पेन होता है, हाथ का दर्द होता है, हाथ सुन्न होता है।
0: हाँ वही तो, जैसे कि कभी कभी होता है हाथ सुन्न हो जाता है, सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाता है ना, और घुटना में दर्द होता है, तो उनको क्या?
1: वही तो आपको बोले ना, हम लोग का दवाई राष्ट्रक बहुत अच्छा दवा
0: नहीं, वो दवा तो है ही, अपना कुछ सावधानी भी तो करनी होगी,
1: ठंडा पानी होने कुछ नहीं करने पड़ेगा,
0: कुछ खास चीज जैसे तेल लगाना या फिर
1: सरसों तेल गर्म करके लगाइए, उसके लिए तो अच्छा है। आप लोग जानते हैं सरसों तेल अमृत है हम लोग के लिए, जितना बजाज का तेल से भी सरसों तेल बहुत अच्छा तेल है, लेकिन मिलावट का चलते हम लोग सब कोई नहीं लगा रहा, कोई ऑरिबल लगा रहा है, कोई जंतु लगा रहा है, कोई बाजार का तेल मर रहा है उसको लगा रहा है, लेकिन घर में सरसों तेल गर्म करके लगाइए, देखना नहीं होगा। उसमें और गर्म करने चाहते हैं सरसों तेल में, तो पुराना अदरक दे दिए, सोल्ट बोलते हैं जो पुराना अदरक, उसको देखे गर्म करके लगाइए, बहुत फायदा करेगा।
2: अच्छा,
1: हाँ बहुत फायदा मैंने, वो तेल को गर्म करता है और गर्म कर देता है उसको सोल्ट में, अदरक तो सोल्ट है ना, ये है गर्म है ना, बहुत अच्छा काम का सोल्ट में।
0: और जैसे उम्र के साथ होता है ना, घुटना वगैरह दर्द होता है, खटखट करता है, तो
1: वो तो कैल्शियम कमी होने से होता है,
0: तो उनको क्या खाना चाहिए?
1: कैल्शियम बीटरूट खाएंगे कैल्शियम बनने के लिए, तो धूप में बैठेंगे, विटामिन डी लेना पड़ेगा उनको है ना, विटामिन डी का कमी होता है, विटामिन थ्री का कमी होता है, विटामिन थ्री विटामिन डी लेना पड़ा जरूरी है उनका लिए, आपका विटामिन डी आपका धूप है, धूप में जितना बैठेगा उतना अच्छा, ये सब लेना पड़ेगा, नहीं खाना जो जब तक विटामिन नहीं खाइएगा तो दर्द जाएगा ही नहीं। अभी का कम उम्र का बच्चा लोग को भी हो रहा, बच्चा को पढ़ने के लिए वो लोग इतना बोझ स्कूल में दे रहे थे ना बैग उठाने के लिए, बच्चों लोग को भी आ रहा है कोरोना का दर्द, ये बात नहीं है, तो क्या कीजिएगा, हम लोग वातावरण में हो जाओगे।
0: तो बच्चों को किस तरह से देखभाल
1: करना, कोई कैल्शियम देना पड़ेगा हम लोग को, तेल मालिश करने का देखना पड़ेगा,
0: तेल मालिश करना होगा, और खाने
1: खाने पीने का परहेज करना, बाजार का चीज देने खाना बना कर पड़ेगा, बाजार चीज देना नहीं होगा।
0: और घर में क्या ज्यादा देना चाहिए, उनके भोजन में क्या शामिल करना चाहिए?
1: भोजन में रोटी सब्जी तो बच्चे लोग,
0: वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ
1: काजू किशमिश थोड़ा बहुत अपना रात को भिजा दीजिए, उसको सुबह सुबह खिलाइए, अच्छा काम करे काजू किशमिश, अभी तो हम लोग जानते काजू किशमिश का खाना बहुत अच्छा है, थोड़ा दो चार तो लाल बादाम दे दीजिएगा है ना, इस समय और अच्छा काम करेगा।
0: और उम्र के साथ आपका शुगर भी हो जाता है लोगों को, आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है,
1: तो बहुत घर का टेंशन के लिए होता है बीमारी, घर का टेंशन होगा, शुगर होगा, बीपी होगा, सब होगा, उसका जब तक चेकअप नहीं कीजिए तब दवाई भी नहीं खाना चाहिए, कोई आइए हमको शुगर हो गया दीजिए बोल दवाई, चेकअप करके दवाई खाना चाहिए है ना, शुगर का दवाई होम्योपैथी में भी एलोपैथी में सब में दवाई है, हमें चेकअप करा के दवाई इलाज कराइए। और बीपी देखिए, अब बीपी का दवाई तो जैसे ही शुरू हो गया तो शुरू से लास्ट तक खाना ही पड़ेगा, बीपी का शुगर का भी जो भी खिलाइए, होम्योपैथी खिलाइए, एलोपैथी खिलाइए, आयुर्वेदिक खिलाइए, जो भी खिलाएगा लगातार खिलाना पड़ेगा, उसको बंद करने से मुश्किल।
0: और उनको कुछ खास अपने दिनचर्या में कुछ,
1: देखिए शुगर पेशेंट को तो हम लोग बोलते भात नहीं खिलाना, लेकिन आप जैसे भी भात नहीं खाएंगे तो फिर शरीर भी तो कमजोर हो जाएगा, तो एक बार भात सुबह रोटी रोटी खिलाइए, आलू तो बंद करना पड़ेगा, यही है आलू तो बंद करना पड़ेगा, शुगर में सब जानते हैं कहाँ बंद खाना है कहाँ नहीं खाना है, जमीन के नीचे सिर्फ शुगर को नहीं खाना चाहिए, माटी का नीचे करते हैं, लेकिन कहाँ खाएगा, अभी तो आलू तो कुछ है ही नहीं, तो
3: इस भेंटवार्ता के साथ ही श्रोताओं विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है, कार्यक्रम से हमें विदा दें, नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
6: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
7: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
6: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों से कराया अवगत, पर्यावरण, जल संरक्षण और उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने रांची में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया सम्मानित, बलिदान को किया याद। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने भाजपा पर किया पलटवार। रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी बारिश का पूर्व

0: पूर्वानुमान येलो अलर्ट जारी। रांची में डुरंड कप का रंगारंग आगाज, सेना के शौर्य और लोक संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी के बीच पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड समेत देश भर में लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्थित चाराडीह आवास पर सामूहिक रूप से इसका श्रवण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के कांके रोड स्थित भाजपा के मंडल कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कारगिल विजय दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया तथा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।
2: आज आवश्यकता है कि हमारे युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और सेवा के इन आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने वीर सैनिकों के सपनों का एक ऐसा भारत बनाएंगे जो समृद्ध, विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व में गौरव के साथ अग्रणी हो। यही हमारे अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: कारगिल विजय दिवस पर आज गुमला में लांस नायक अल्बर्ट एक्का समेत शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को याद किया गया।
3: सभी वासियों से और भी आग्रह करते हैं, युवाओं से आग्रह करते हैं, हम सैनिक न बन सकें तो कम से कम उनका सहयोग, सम्मान और समर्थन जरूर करें। इस कालखंड में जो विक्रम बत्रा और ऐसे मनोज पांडे जी जैसे लोगों ने जो अपने शहादत दी, हम उनको भी नमन करते हैं। आज जो विकृतियां हैं समाज में, हम इनको आने वाले समय में दूर करने का प्रयास करेंगे।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के रांची पिस्का पलमा खंड पर पतराचोली टोल प्लाजा पर आज मध्य रात्रि से टोल टैक्स लागू हो गया है, जिससे रांची गुमला मार्ग पर सफर महंगा हो गया है। नई दरों के अनुसार कार, जीप और वैन के लिए एकल यात्रा का टोल 40 रुपए तथा दो एक्सल बस और ट्रक के लिए 140 रुपए निर्धारित किया गया है। NHAI ने 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर व्यवसायिक वाहन मालिकों के लिए 360 रुपए मासिक पास की सुविधा दी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला चरम पर है। इस बीच केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर राजनीतिक मंच पर बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले पर फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें चेताया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में राज्य में विकास की उम्मीद बेमानी है।
4: सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो कभी भी प्रमाणिकता से उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लोग नहीं करते। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। और इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पूरे मामले को आप सीबीआई से जांच करें।
0: इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े विवादों पर भाजपा पर पलटवार किया है। श्री तिर्की ने आज गुमला में पत्रकारों से बातचीत में तत्कालीन राज्य सरकार और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
5: दल तक आप बोलिएगा कि भाई पेपर लीक परीक्षण है, ये बात तो 3 साल से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोल रहे थे कि विदेशी फंडिंग से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, तो धर्म का मामला को जोड़ देते थे, आखिर इस्तीफा देना पड़ा ना। इंतजार कीजिए, झारखंड में भी जांच चल रही है, ऐसे लोग बक्से नहीं जाएंगे।
0: देवघर पुलिस ने फर्जी साइबर पुलिस बनकर घरों में छापेमारी करने के नाम पर लूटपाट करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लंबे समय से देवघर और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार समेत कई चीजें बरामद की गई हैं।
6: साइबर क्रिमिनल्स के यहाँ चिन्हित करते थे और उसके घर में जाकर लूटपाट करते थे और पुलिस का धमक दिखाकर डर दिखाकर उनके घर से जो पैसा होता था और जो सामान होते थे उसे लूटकर चले जाते थे और यह वर्दी गैंग की तरह ही कार्य कर रहा था, एक गिरोह बना लिया था।
0: राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला और खूंटी समेत कुछ अन्य जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल इन दोनों के अलावा रांची और लोहरदगा में भी भारी बारिश के आसार हैं। आगामी 28 जुलाई को पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची में आज से डुरंट कप टूर्नामेंट रंगारंग आगाज के साथ शुरू हो गया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय सेना के शौर्य और झारखंड की लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होने वाले हैं और 1 क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों से कराया अवगत, पर्यावरण, जल संरक्षण और उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने रांची में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया सम्मानित, बलिदान को किया याद। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने भाजपा पर किया पलटवार। रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। और रांची में डुरंट कप का रंगारंग आगाज, सेना के शौर्य और लोक संस्कृति का दिखा अनूठा संगम, जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी के बीच पहला मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
8: आगे सैलरी?
9: हाँ।
8: नहीं झुमके?
9: ना, पहले बचत,
8: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झोंकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
9: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
11: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की पारदर्शिता को लेकर SMS करने की व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि
2: लगभग हमारे जिला में 98% SMS हो रहे हैं स्कूल में, लेकिन जो 2% जो हमारे स्कूल बच रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, इससे पहले भी उन लोगों को स्पष्टीकरण लिया गया था। जो भी स्कूल SMS नहीं कर रहे थे उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। वैसे जो है हमारे यहाँ अभी 34 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर SMS नहीं हुआ है कल, वैसे स्कूलों पर जो है आज हम लोग स्पष्टीकरण के साथ उनका वेतन HM का वेतन स्थगित करने जा रहे हैं। अगर जो है इसके बाद भी उनमें सुधार नहीं आती है तो इसको जो है हम लोग स्थापना में रहकर उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई करेंगे, या तो उनका निलंबन की कार्रवाई की जाएगी या उनका वेतन जो है वेतन कटौती का कार्य किया जाए।
1: राज्य सरकार ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से विद्यालयों में लाने के लिए सुबह की धूप के नाम से अभियान शुरू की है, ताकि ड्रॉप आउट बच्चे पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि
2: पूरे राज्य में गुमला जिला के 2 ऐसे ब्लॉक हैं जिनको चिन्हित किया गया है। एक हमारा घाघरा ब्लॉक है जिसमें 99 स्कूल के पोषक क्षेत्र को, और दूसरा भरनुआ है जहां 58 स्कूल के पोषक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे हैं। उसको ध्यान में रखकर जो है एक सेटिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सेटिंग एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ है सुबह की रोशनी। इसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और यह अभियान 7 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक जो संचालित है।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत गुमला जिला के किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि
3: हम लोगों को इसमें धान का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें हाइब्रिड धान आया है, जिसमें हम लोगों को लक्ष्य 360 हेक्टेयर का दिया गया है और 54 क्विंटल इसमें धान हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही प्रोसेस में जो हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है अरहर और उड़द का दिया गया है।
1: गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र में अवैध खनन तथा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि
4: हम लोग को सूचना मिल रही थी कि कुछ बॉक्साइट क्षेत्र से वन के इलाके में से टाइनाथ के टेम्पल जो है उसके ऊपर आपका म्यूचुअल पार्ट पड़ता है, वहां सूचना थी कि वहां पे इलीगल बॉक्साइट माइनिंग हो रहा है फॉरेस्ट लैंड में। तो हमारी टीम ने इंटेलिजेंस गैदर किया और फिर चीजों को ट्रैक किया और फिर वहां पे बॉक्साइट का ट्रक सीज हुआ। उसके अलावा करीब करीब 5 गाड़ियां और पकड़ाई हैं जो कि आपको टिम्बर लेके जा रही थी इलीगल तरीके से बिना परमिशन के, वहां पर सीजर हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि जलावन का लकड़ी जो होता है वो पिकअप पे ट्रैक्टर्स पे बेतहाशा मार्केट मतलब बेतहाशा मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जंगलों से काट के लेके जाते हैं, तो उससे भी कार्रवाई हुई है।
1: बहरहाल गुमला जिला में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है, वहीं कृषि विभाग भी किसानों को लाभ दे रही है। इसके साथ ही वन विभाग भी वन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है, जो एक बेहतर कदम है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:16 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं, पहला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे हमसफर से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंद्र बीरक, जयदेव बीरक और मीका बीरक। अमजोड़ा पुकरिया मलुका से आप हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। इसी गीत को सुनना चाहा है कुचाई इचाहतु से भोलाराम लोहादा, लुद्री लोहादा, श्रुति लोहादा, सोमनाथ लोहादा, पूर्णिमा लोहादा, लालमुनि लोहादा और व्यंजना लोहादा। ग्राम तोनागढ़ से मुकेश महतो, दिलीप महतो, विजय महतो, सुमन महतो, सूरज महतो, सुरेंद्र महतो और मुकेश बाबू। खरसावा पातिसाही से आप हैं शुक्र नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। सोनागांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक और मकरू आचार्य। ग्राम कुड़ा से आप हैं पोंडे बॉय पाई, रेशनल बॉय पाई, यशमती बॉय पाई, कश्मीरा बॉय पाई, मीनाक्षी बॉय पाई और तारकेश्वर बहंदा। इसी गीत को सुनना चाहा है मौलडिया सोनवा रोड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाकपाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपाणी प्रधान और नेकपाणी प्रधान। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चेबासा से आप हैं भोलाराम मधुर, मोहिनी मीरा मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी। बड़े बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, खुशबू खुशी, अभिषेक अंश, अंशु, टिंकू और मुन्ना। ग्राम हाड़ीरा से मानताराम सिंह कुंटिया। खरसवा गांव ढलाई किला से आप हैं लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सिनेमाई सोए, विभी सोए, तनुजा सोए, राधिका सोए और पुष्पा सोए। छोटा निमडी चैबसा से आप हैं बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और रीति कुमार। ग्राम पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रोकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, संजीव सोरेन, नंदनी, गोपाल महली और एनएस महली। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। आप सबने सुनना चाहा है दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपके पसंद कार्यक्रम में श्रोता, आइए अब सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के स्वरों में। इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा नेमडी चाईवासा से तुलसी पतिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार। शिवाजी चौक राजीव छत्तीसगढ़ से आप हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि वास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। इसी गीत को सुनना चाहा है चांडिल ग्राम हारोडी से तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो, मन महिनी और साथी। गांव गीता सरेकिला से राधाकृष्ण गोप, राजेश महतो, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, विक्की गोप, सुनीता गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप और आराध्या गोप।

इस गीत के बाद आइए सुनते हैं विजय फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में। इस गीत को पसंद किया है बड़ी बाजार चाईबासा से मोहज़्ज़म बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू किरण, रोशनी मुस्कान और परी नबीहा। ग्राम गिले लोहर से आप हैं कोमल बेसरा, बसंती बेसरा, बनमाली बेसरा, सीत कुमारी बेसरा, रमेश बेसरा, अन्नू और पूजा। बड़ा बम्बो सुपैसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, देवेन बाबू, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा नायक और सीमा। ग्राम जोजोकुड़मा से मनोज गागरई, बसंती गागरई, सोनाली गागरई, आयशा गागरई, रचना गागरई और जितेंद्र गागरई। आदर्श नगर सरायकेला से तनुश्री, बिट्टू, विक्की, किरण, गुलाब, उत्पला, शिवम, सुजाता और आरती। इसी गीत को सुनना चाहा है कुचाई बिद्री गांव से केपी सोए, दुर्गामती सोए, सरिता सोए, रेशमी सोए, राजकुमारी सोए, विशाल, सन्नी और मुन्ना सोए। ग्राम सूराबेड़ा से बान सिंह सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार। घाटशिला से आप हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बसंती भगत, सोना, रूपा, मोनिका, चांदनी भगत, दादू भाई, आयुष भगत और शिवम भगत। ग्राम महाली साई से बीरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फुलमणि महाली, शकुंतला महाली, यशोदा महाली, सुमांती महाली और शांति महली।

0: पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: స్వయం ఈ కట్టుబడి భారతీయ సేనా.
1: आपकी पसंद कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वक्त की आवाज़ फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में. इस गीत को पसंद किया है ग्राम डोंगरिया मलाजखंड मध्य प्रदेश से मुन्ना पटले, माधुरी पटले, याचना पटले और दीपांशु पटले. सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप. कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज. पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद. इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया. फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया. सदाबहार श्रोता संघ ग्राम मोहत जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आप हैं मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी और भैया

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं नसीब फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी।

दिवाकर से आप हैं, उत्तर कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

नसीब फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात के 8 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म निशान से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत के लिए फरमाइशी खत में लिखा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कसीम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। राजनंदगांव से यूकुब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। इसी गीत को सुनना चाहा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति।

नरवा डे, आकांक्षा नरवा डे और आकाश कुमार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

मिस्टर इंडिया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और किशोर कुमार के युगल स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राशपाल गजबिये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजबिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। माधवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तरनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जवेंद्र कुमार वर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्ताबा खान, राव भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सादुल शहर राजस्थान से आप हैं ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। बटिंडा रोड डाबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, एस पी बाला सुब्रमण्यम, उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। इस गीत को सुनना चाहा है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गवाड़कर रहा है श्रीमती सरिता गवाड़कर और प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदरापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक आकार, हाइट्स बहादुर। नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी और मास्टर शानू ध्रुवंशी। ग्राम सुपैसई से इंद्रजीत तांती और मुरारी मोदी। लुधियाना पंजाब से आप हैं अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डबलुल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर। बुलंद शहर से आप हैं बद्रुवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहट्टी बरेली से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चौंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और आराध्या चौंसौलिया।